0: स्टेशन म्युनिसिपैलिटी के कचड़े पर उगने वाला जो आग, जिसका पुष्प किसी भी देवता पर नहीं चढ़ाया जाता और भी किसी काम नहीं आता, उस पुष्प को चढ़ा दो तो क्या दे देता है? तो उसके लिए संकेत किया, अर्क दौड़ प्रभृति कुसुमयी अर्चनम ते विधेयम तेन प्राप्त स्मर हर स्वराज्य मोक्ष लक्ष्मी। संकेत किया, ये जो भगवान है उनका नाम ही रखा स्मर हर। वो क्या करते हैं? वो कहने लगे, जब विद्या आती है ऐसे उसका जब ज्ञान होता है, और वही तीसरा उनका ज्ञान नेत्र भी, तो कहने लगे वहां पर वो सबसे पहले कामना को ही जला देता, और जब कामना को जला तो ऐसा स्मर हर वो क्या देने वाला? कहने लगे यदि कोई राज्य चाहता तो राज्य प्राप्त करा देता, लक्ष्मी चाहता तो लक्ष्मी प्राप्त करा देता, और मोक्ष चाहता है तो मोक्ष भी प्राप्त करा देता। ऐसा वह देव है, और उस देव से तुम भिन्न नहीं हो, वही देव रूप तुम हो, लेकिन हमने अविद्या के कारण उसको जो है परिधानों के कारण अपने को भिन्न मान ली, और परिधान केवल है खेल के लिए, तो खेल को हम खेल न समझ करके खेल में ही हम आसक्त हो गए। अब इस खेल को खेल समझ करके करोगे तब जीवन में जो भगवान कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, तब तुम्हारे जीवन में वह कर्म करने की योग्यता आएगी, और वो क्या आएगी? तब जो है नाभिनंदन्ति निष्कर्म्यम, और कहा न कर्मसु अनुसज्जते, तब जो है कर्म में भी उसकी आसक्ति नहीं होगी और निष्कर्मता भी जो है प्रसन्नता नहीं होगी। क्या मतलब? आप देखते हो कोई कर्म सामने आया और आपने कहा इसको नहीं करेंगे, छोड़ दिया, और छोड़ करके आप प्रसन्न होते, तो कहने लगे ऐसा ये निष्कर्मिता नहीं है, और आप जो है कर्म ढूंढने जा रहे हो, और कर्म ढूंढने जा रहे हो उसमें कभी सफलता कभी असफलता मिलती है, तो कहने लगे वो भी वो नहीं करता। कैसे? उदाहरण के लिए, जैसे जीवन में किसी व्यक्ति दो भाई है और बड़े भाई का विवाह हो रहा, और आजकल लोग भी देखते क्या है कि एक लड़का होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, भाई बहने होंगे तो उनकी शादी करनी पड़ेगी और झंझट रहेगा, इसलिए एक ही लड़का। लेकिन वो पहले क्या होता था, वो भाई भी यदि उसका छोटा भाई पढ़ने में कमजोर है, अन्य योग्यता नहीं है, तो भी उसका जीवन निर्वाह करता, सोचता था छोटा भाई हमारा कर्तव्य है भाई के नाते, ये सोच करके कर्म करता था, उस कर्म से हटता नहीं था, उस कर्म का त्याग नहीं करता। आज हम कर्म का त्याग भी करते है ना, और दूसरी तरफ और उसमें खुश होते, इस झंझट से दूर हो गए, ये निष्कर्मिता में। दूसरी तरफ घर में मां बीमार है, और मां जो है बीमार है तो उसके सेवा में तो किसको कर दिया? नौकर को कर दिया। हमारा कर्तव्य है मां सेवा करना, ये कर्म प्राप्त है, लेकिन वहां हमने नौकर को कर दिया, नौकर सेवा करेगा, नर्सों को कर दिया, और हम कहां जा रहे? कहने लगे हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में ही। किस लिए? कहा समाज की सेवा करने के लिए। विचार करो वहां क्यों जा रहे हो? क्योंकि वहां तो अखबार में नाम निकलेगा कि ये सेवा करने वाले हैं, यहां हमने सेवा का त्याग किया और वहां सेवा का प्रदर्शन कर रहे, वहां कर्म ढूंढ रहे, तो वो क्यों ढूंढ रहे हैं? कि हमें जो है ये, तो इस प्रकार से एक तरफ कर्म में आसक्ति होना, वहां कर्म में हमारा आग्रह है, और इधर कर्म का हम त्याग कर रहे, तो कर्म के त्याग करने में जो तुम प्रसन्नता समझते हो, कहा कि ये निष्कर्मिता नहीं है, और कर्म जो तुम ढूंढ रहे हो वो कर्म भी वास्तव में तुम्हारा जो है दुखदायी होगा, वो भी तुमको यश देने वाला नहीं। भगवान कहते हैं कि कर्म में आसक्ति भी नहीं, दुराग्रह भी नहीं, कर्म को ढूंढता भी नहीं, और आए हुए कर्म का वह परित्याग भी नहीं करता। जो कर्म आ गया है उस कर्म को करता है, और उस कर्म को करते हुए और जो है उसमें आसक्त नहीं होता। इसको उन्होंने कहा नाभिनन्नन्ति नैष्कर्म्यम, कर्म को छोड़ने से वह प्रसन्न नहीं होता है और कर्म में कहीं आसक्त भी नहीं। हम तो ढूंढते हैं हमें कर्म मिल जाए और ये हम करें सेवा है, क्योंकि हमारा अखबार में नाम आए, तो ये ऐसी भी आसक्ति उसकी नहीं रहती है, तो कर्म को ढूंढता भी नहीं है और कर्म का त्याग भी नहीं। सुसमो वही जो है सुंदर समन को प्राप्त होता है, सुसमो या परित्यागी, और वही वास्तव में क्या है, त्यागी है। और सो असंसक्त, वही क्या है वास्तव में, असंसक्त है, और ऐसा जो असंसक्त है वही कर्मयोगी है, और वो कर्मयोगी है तो संकेत भगवान ने कर दिया, बुद्धियुक्तो जहातीय उवेशुक दुष्कृते, वो दोनों को पाप पुण्य और शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर देता है, अर्थात वहां पर जो है दोनों में उसकी समता हो जाती है, और वो कर्म करते हुए भी वो कर्म उसे लिपायमान नहीं करता, वो व्यक्ति ही प्रगति को प्राप्त होता है, और वो व्यक्ति ही है इस मृत्यु काल के अंतर्गत उस मृत्यु से भयभीत नहीं होता, उसकी इच्छा मृत्यु हो जाती है, वो योगी कहलाता, ये संकेत कर दिया गया। इसलिए ये हमारे जीवन की प्रगति है, ये हम समझें, और हम अपने में ये न समझें कि ये सामर्थ्य हमारे में कैसी आएगी। तो भगवान ने जो कहा कि त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम, ये तो तेरे हृदय की दुर्बलता है, तूने जो विचार धारणा बना रखी है वो तेरी गलत है, अविद्याकृत है, इसलिए तेरे जीवन में विद्या आए, और विद्या आएगी तब जो बनेगी वो वही वसो पवित्र मसीह, सारे वसुओं को पवित्र करने वाला तू है। अब आगे चर्चा नहीं, कल। ओम सच्चिदानंद भगवान की जय।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: शैवम.org இன் ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு வணக்கம். நீங்கள் அடுத்ததாக கேட்க இருக்கும் நிகழ்ச்சி சிவகீர்த்தனைகள். பாடியிருப்பவர் டி கே பட்டம்மாள் அவர்கள், திருச்சிற்றம்பலம்.

तस्यास्ते पृथ्वीदेव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादाधे आयंगो वृष्णीरक्रमीदसादन्मातरं पुरः पितरं च प्रयं स्वाहा अन्तश्चारतिरोचनास्य प्राणादापानति व्यख्यन्महिषो दिवं त्रिज्ञाशद्धामविराजति वाक्पातंगाय धीयते प्रतिवस्तोरहद्युभिः अग्निज्योतिषन्त्वा वायुमतीं प्राणवातीं स्वर्ग्याग्निस्वर्गायोपादधामि भास्वातीम् अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निस्वाहा सूर्यज्योतिषन्त्वा वायुमतीं प्राणवातीं स्वर्ग्याग्निस्वर्गायोपादधामि भास्वातीम् सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः।

सवित्रा सजूरुषसेन्द्रावत्या जुषा नस्सूर्यो ओ वेतु स्वाहा इह पुष्टिं पुष्टिपतिर्दधात्विह प्रजाज्ञे रामयतु प्रजापा।

भूतस्य भक्षयामि वाजे एवाजी भूयासम् सवित्रा प्रसूता दैव्यापा उन्दन्तु ते तनूं दीर्घायुत्वा यवर्चासे कश्यपश्यत्रियाजुषं जमदग्ने स्त्रियाजुषं यद्देवाना अन्त्रियाजुषं तन्मे अस्तु त्रियाजुषं।

दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के प्रसंग में छठे स्तोत्र की व्याख्या चल रही है। राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो

नमयिदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो अनेक मतवाद हमारे पूर्वीय विचार के प्रसंग में उपस्थित होते हैं। शंकराचार्य कहते हैं, व्यामोह संहारणे माया सत्य विलास क्यों न हो। ईश्वर की माया ही ऐसी है, जब तक उस माया का व्यामोह रहता है तब तक यथार्थ वस्तु का भान नहीं हो पाता है। जिसको जैसा लगता है वैसा ही निश्चय करके कहने लग जाते हैं। तो हमने कल कहा था, दारू के नशे में मस्त हुआ हुआ व्यक्ति यदि वह नशे के प्रभाव से कुछ कहता है तो वह सभी को मान लेना चाहिए, यह जरूरी नहीं है। यदि वह नशे में नहीं है, होश में है, तब वह जो कहता है वो माना जा सकता है। इसी प्रकार के जब तक ये माया का नशा उतरेगा नहीं तब तक व्यक्ति इसी प्रकार के अनेक मतवाद अपने बुद्धि के बल से कहते रहेंगे। अनेक मतवाद क्या है? देहं प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि चलं बुद्धिं च शून्यं विदुः। देहं प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि चलं बुद्धिं च शून्यं विदुः। ये सब अनेक मतवाद हैं। कुछ लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं, कुछ लोग प्राण को आत्मा मान लेते हैं, और कुछ लोग इंद्रिय समूह को आत्मा मानते हैं, कुछ लोग मन को ही आत्मा मान लेते हैं, कुछ लोग बुद्धि को आत्मा मान लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन सब का जो संघात है, सम्मिलित स्वरूप है, वो आत्मा है मानते हैं। और कुछ लोग कर्ता अर्थात केवल चिदाभास को ही आत्मा मान लेते हैं। ये क्या है? तो बोले भ्रांता, ये सब भ्रांत हैं। किसके चलते ये भ्रांत हैं? तो बोले माया व्यामोह के चलते भ्रांत हैं। ये माया का व्यामोह कैसे हटे? तो कल विचार किया था कि अपने आप हटने वाला नहीं है। व्यामोह अपने आप प्राप्त हुआ है, अपने आप ही हुआ है, लेकिन हटेगा अपने आप नहीं। ये कब हटेगा, कौन हटाएगा इसको? तो बोले गुरु मूर्ति, दक्षिणा मूर्ति। इसलिए एक दिन के प्रसंग में हमने कहा था, भगवान शिव को ज्ञान मूर्ति, शिव को दक्षिणा मूर्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि माया के व्यामोह को हटाने में वह दक्ष है, इसलिए उनका नाम दक्षिणा मूर्ति है। मूर्ति शब्द का अर्थ होता है स्वरूप। कुशल हैं, दक्ष हैं, समर्थ हैं, इसलिए उनका नाम दक्षिणा मूर्ति, गुरु मूर्ति ये रखा गया। उन्हीं मतवाद में ये उपस्थित हुआ था कि सर्वम शून्यम, बौद्धों का एक पक्ष है शून्यवाद। उन लोगों की मान्यता है कि जगत पहले कुछ नहीं था, केवल जगत नहीं था ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं था। सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, ब्रह्म भी नहीं था, जीव भी नहीं था,
जगत भी नहीं था, सर्वम शून्यम। उससे ये अचानक जगत उत्पन्न हुआ, जीव भाव उत्पन्न हुआ, जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, और बीच में यदि कोई होता है तो यह केवल भ्रांति होती है। एक बात में कोई विवाद नहीं है, वह है भ्रांति। भ्रांति के बारे में किसी के साथ कोई विवाद नहीं है। सभी दार्शनिक लोग भ्रांति को मानते हैं, बुद्धिस्ट भी भ्रांति को मानते हैं। जगत जो दिख रहा है वो शून्य में दिख रहा है। जैसे आकाश कोई वस्तु नहीं है, शून्य है, लेकिन उसमें नीलिमा दिखती है, वो केवल भ्रांति है। बुद्धिस्ट लोग मानते हैं कि जगत सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, सर्वम शून्य, उसी शून्य में से ये जगत उत्पन्न हुआ। इस सिद्धांत पर वेदांत यानी आदिगुरु शंकराचार्य सहमत नहीं है। शंकराचार्य जी का कहना है कि कुछ था, क्योंकि भ्रांति भी निराधिष्ठान नहीं हुआ करता है, किसी न किसी अधिष्ठान में ही भ्रांति होती है, चाहे वह कल्पना जीव की हो, चाहे माया की कल्पना हो, कल्पना का कोई न कोई आधार होना चाहिए। निराधार कोई भ्रांति, कोई कल्पना नहीं हो सकती है। बड़े से बड़े कुशल चित्रकार को भी यदि कहा जाए तुम बढ़िया चित्र बनाकर दिखाओ, तो वह अपनी कला को प्रदर्शन करने के लिए कोई न कोई आधार खोजता है, या कोई का कोई प्लेन कागज ले आओ, या कोई का कोई कहेगा कोई दीवार दिखाओ, कहेगा या कहीं फर्श दिखाओ, कोई कपड़ा दिखाओ, कोई न कोई प्लाईवुड दिखाओ, कुछ न कुछ कोई स्थान दिखाओ, मैं कहां अपनी कला का प्रदर्शन करूं, कहां दिखाऊं चित्र को। तो कुशल से कुशल चित्रकार भी चित्र का प्रदर्शन करने, अपनी कल्पना को व्यक्त करने के लिए कोई न कोई आधार खोजता है। और उससे कहा कि आकाश में, स्पेस में तुम अपनी कला को दिखाओ, तो शून्य आकाश में वो अपनी कला को दिखा नहीं पाएगा। उसे इनको भी कहो कि कपड़े के बिना, किसी कागज के बिना तुम अपने कला का पेंट करो आकाश में, नहीं कर पाएगा। कर पाएगा वो? शून्य में कल्पना भी नहीं हो सकती है, भ्रांति भी नहीं हो सकती है। सारे कल्पना और भ्रांति का भी कोई न कोई अधिष्ठान, कोई न कोई आधार चाहिए, और उस आधार का नाम ही है परमात्मा। उसी का नाम है ब्रह्मा, उसी का नाम है आत्मा। राहु ग्रस्त दिवा करेन्दु सदृशः, कभी कभी वह आत्मा विशेष रूप में व्यक्त होता है और कभी कभी सामान्य रूप में व्यक्त होता है। एक ग्रहण का दृष्टांत शंकराचार्य जी ने दिया है, चंद्रमा में और सूर्य में जो ग्रहण लगा करता है उसका दृष्टांत देकर अधिष्ठान सत्ता और प्रकाश को सिद्ध कर रहे हैं। जैसे इस ग्रहण के समय में ग्रहण लगने के लिए दो आधार चाहिए, एक चंद्रमा को आधार बनाता है और दूसरा सूर्य को आधार बनाएगा। आजकल का कोई भी वैज्ञानिक ग्रहण को दिखाना हो, सिद्ध करना हो, तो सूर्य या चंद्रमा के अलावा और कई जगह ग्रहण सिद्ध नहीं कर पाएंगे। हालांकि अनुमान से वो कह रहे हैं इसी तरह जैसे सूर्य में और चंद्रमा में ग्रहण लगा करता है, इसी तरह और ग्रहों में भी ग्रहण लगा करता है। लेकिन वो और ग्रहों में लगने वाले ग्रहण हमको बोध नहीं होता है, हमको भान नहीं होता है। राहु ग्रस्त दिवाकर इंदु सदृश, पूर्ण खग्रास सूर्य ग्रहण जिस समय लगा होता है तो सभी लोग ये कहते हैं कि आज सूर्य पूरी तरह ढक गया। ऐसा ग्रहण लगा कि सूर्य दिखाई ही नहीं पड़ा है।
चंद्रमा में ऐसा ग्रहण लग गया कि चंद्रमा पूरी तरह ढक गया, ऐसा लगा कि दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, चंद्रमा ही नहीं दिखा। लेकिन कहा जाता है कि चंद्रमा नहीं दिखा, ये किससे दिखा? चंद्रमा नहीं दिखा, ग्रहण से चंद्रमा ढक गया, ये बात कैसे दिखा? उसी चंद्रमा के प्रकाश से दिखा। सूर्य में पूरा ग्रहण ऐसा लगा कि सूर्य दिखाई ही नहीं पड़ा, ये बात कैसे दिखा? उसी सूर्य के प्रकाश से दिखा। अंतर यही है, ग्रहण न लगा हुआ हो तो सूर्य और चंद्रमा स्पष्ट दिखेगा, पूरा का पूरा दिखेगा, और ग्रहण लगा हुआ हो तो चंद्रमा और सूर्य पूरा नहीं दिखेगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा। फिर भी चंद्रमा का होने का और सूर्य का होने का अस्तित्व का भान होता ही रहेगा। क्या ग्रहण लगने पर सूर्य का भान ही खत्म होता है? कोई कहेगा कि आज अंतरिक्ष में सूर्य ही नहीं है, कहेगा दिन में, ग्रहण लगने पर भी। ग्रहण लगने पर भी कोई कहेगा कि पूर्णिमा के रात्रि को आज अंतरिक्ष में चंद्रमा ही नहीं है, कहेगा कोई भी। ग्रहण न लगे अवस्था में चंद्रमा जिस रूप में दर्शन हो रहा था, सूर्य का जिस रूप में दर्शन होता रहता था, उस रूप में भले ही न हो, लेकिन चंद्रमा के और सूर्य के अस्तित्व को, सद्भाव को कोई भी मूर्ख भी नकार नहीं सकता है। उसके सन्मात्रता को, भाव मात्रता का कोई भी निषेध नहीं कर सकता। माया समाच्छादनात्, जैसे यह दृष्टांत सूर्य के ग्रहण का, चंद्रमा के ग्रहण का, ग्रहण लगने पर भी सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व का भान होता है, उसी प्रकार से करणोपसंहरणतः सुसुप्ति अवस्था में इंद्रियां और अंतःकरण

ज्ञान अंतकरण के रहने पर स्वप्न सृष्टि का भान अपने बारे में भान जिस तरह हुआ करता था सुसुप्ति में उस तरह नहीं होता है। लेकिन फिर भी सुसुप्ति में करणों का उपसंहार हो जाने पर भी आत्मा के भान का कोई निषेध नहीं कर सकता है, आत्मा के अस्तित्व का कोई भी निषेध नहीं कर सकता है। सन मात्र उसके सत्ता मात्र की स्फूर्णा तो सुसुप्ति अवस्था में भी रहती है, यथावत रहता है। सन मात्र करणोपसंहरणतः यो भूत सुसुप्तः पुमान, उसके सतमात्रता का हान मात्रता का आनंद मात्रता का सत्ता का होनापने का और ज्ञान का चित्त का और आनंदता का सुख का भान उस सुसुप्ति में भी बाधित नहीं होता है। करणों का उपसंहार होने पर भी सुसुप्ति में आत्मा की सत्ता का आत्मा की चित्तपना का भानपना का और आत्मा के आनंदपना का कभी भी तिरोही तिरोधान नहीं होता, भान होता रहता है, स्फुरण होता रहता है, अनुभव होता रहता है। इस बात को कैसे सिद्ध किया जाए, कैसे माना जाए? यह अद्वैत वेदांत का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, प्रत्यभिज्ञा। ये प्रत्यभिज्ञा से ही यह सिद्ध होता है कि उस अवस्था में भी आत्मा का अस्तित्व अनुभव में आ रहा है, सद्भाव अनुभव में आ रहा है, चित्त भाव अनुभव में आ रहा है, आनंद भाव अनुभव में आ रहा है। यह प्रत्यभिज्ञा से सिद्ध होता है। शंकराचार्य जी नए वाक्य प्रयोग करते हैं, दो चीज के लिए प्रत्यभिज्ञा प्रयोग करते हैं शंकराचार्य जी। एक तो आत्मा के सद्भाव के लिए प्रत्यभिज्ञा का प्रयोग करते हैं, दूसरा आत्मा के एक रूपता के लिए प्रत्यभिज्ञा का प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि जागृत की आत्मा अलग है, स्वप्न का आत्मा अलग है, सुसुप्ति की आत्मा अलग है, क्योंकि जागृत का जो अनुभव करता है वह स्वप्न का अनुभव नहीं करता, स्वप्न का जो अनुभव करता है वह जागृत का अनुभव नहीं करता, जागृत और स्वप्न का जो अनुभव करता है सुसुप्ति का अनुभव नहीं करता, सुसुप्ति का अनुभव जो करता है वह जागृत स्वप्न का अनुभव नहीं करता। इन अवस्था भेद से कुछ लोगों को भ्रांति होती है कि आत्मा भी भिन्न भिन्न है, ऐसा मानते हैं। ये शून्यवाद के खंडन के बाद ऊपर की जो पंक्ति है, सन्मात्र करणोपसंहरणता यो भूत सुसुप्ता पुमान, शून्यवादी सुसुप्ति का उदाहरण देते हैं कि सुसुप्ति में कुछ नहीं था, कुछ नहीं रहता है, इसी तरह सृष्टि होने से पहले कुछ नहीं था और अचानक जैसे सुसुप्ति से जगा हुआ व्यक्ति के सामने सारा विश्व प्रपंच प्रतीत होने लगता है, उसी तरह ये सृष्टि कुछ नहीं था, बाद में भ्रांति से सारा जगत प्रतीत होने लगा, ये उदाहरण देते हैं। तो शून्यवादियों का खंडन करने के लिए कहा, उस समय में भी सत चित और आनंद ये तीन वस्तु स्फुरित हो रहे थे, होते हैं। एक बात ये शून्यवादियों का, और दूसरा क्षणिक विज्ञानवादी, वो लोग कहते हैं कि आत्मा है तो सही लेकिन वो आत्मा एक एक क्षण में स्थायी है, एक क्षण में उत्पन्न होता है, रहता है और नष्ट होता है, फिर दूसरे क्षण में उत्पन्न होता है, रहता है, नष्ट होता है, फिर तीसरे क्षण में उत्पन्न होता है, रहता है, फिर नष्ट होता है, चौथे क्षण में उत्पन्न होता है, रहता है और नष्ट होता है, तो कार्य कारण का कैसे तुम इसका अस्तित्व करोगे? क्योंकि पूर्व कारण हुए बिना बाद में दूसरा कार्य नहीं हो सकता है। पूर्व आत्मा जो पहले क्षण वाला आत्मा है वो तो उसी क्षण में नष्ट हो गया, तो फिर दूसरे क्षण के आत्मा का कारण कौन बनेगा? इसके लिए वह क्षणिक विज्ञानवादी उत्तर देते हैं,
सजातीय कार्य को उत्पन्न करके वह

0: पूर्व क्षण का कारण खुद नष्ट होता है, वह उत्तर क्षण के लिए अपनी जाति अपने धर्म के कार्य को उत्पन्न करके खुद नष्ट हो जाता है। दूसरे क्षण में जो उत्पन्न हुआ वह भी पूर्व क्षण के जाति का उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह फिर तीसरे क्षण के लिए खुद नष्ट होने से पहले अपने ही स्वभाव अपने जाति या दूसरी आत्मा को उत्पन्न करके वह नष्ट होता है। वह तीसरा भी इसी तरह चौथी आत्मा को अपने जाति आत्मा को उत्पन्न करके वो खुद नष्ट होता है। इसी परंपरा से अनादि अनंत काल तक ये क्षणिक आत्मा ही बार बार उत्पन्न होना नष्ट होना उत्पन्न होना नष्ट होना उत्पन्न होना नष्ट होना ये उत्पत्ति विनाशशील आत्मा को मानते हैं विज्ञान क्षणिक विज्ञानवाद। उसमें हेतु बता दिया सजातीय उत्पत्ति कार्यांतर की उत्पत्ति, जैसे पूर्व बीज खुद नष्ट होता है, जमीन में डाले गए पूर्व बीज वह खुद तो नष्ट होता है लेकिन अपने में पहले विद्यमान सारे संस्कारों से युक्त हुए हुए उन पूरे के पूरे दोबारे दूसरे बीज का कारण रूप सारे संस्कार को उस अंकुर में सन्निहित करके वह पूरा का पूरा बीज नष्ट हो जाता है। बीज खुद नष्ट हो जावे तो भी बीजत्व का संस्कार को वह नाश नहीं करता है, वह संस्कार अंकुर में छोड़कर जाता है और वही पूर्व बीज का संस्कार उस अंकुर में रहता है। उस अंकुर में रहे हुए पूर्व बीज का संस्कार वह वृक्ष में रहता है, उसी वृक्ष में रहे हुए पूर्व बीज का संस्कार कालांतर में फूल में रहता है, उसी फूल में रहे हुए पूर्व बीज के संस्कार कालांतर में फिर फल में रहता है और उस फल में पूर्व बीज का पूरा संस्कार होने के कारण ही उत्तर फल वह पूर्व और दूसरे अंकुर के लिए फिर बीज बनता है और वह बीज फिर खुद नष्ट हो जाता है जमीन में डालते ही। खुद नष्ट होने से पहले सारे सजातीय संस्कारों को अंकुर में छोड़ता है, अंकुर भी नष्ट हो जाता है तो वह संस्कार को वह वृक्ष में छोड़ता है, कालांतर में वह वृक्ष भी नष्ट हो जावे तो भी उस वृक्ष में रहने वाले बीज के संस्कारों को फल में छोड़ता है।
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Vayilar Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankar Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakton, abhi hum aur ek sant ya Nayanmar ki kahani sunenge jinka naam Vayilar hai. Tamil Pradesh mein aadhunik Madras Mahanagar ka ek bhag Mailapur hai. Samudra tat par sthit is Mailapur ka aitihasik mahatv hai. Ye Tamil ke vishwa vikhyat granth Tirukural ke rachayita Tiruvalluvar ki nagari hai. यहाँ आज भी प्राचीन कपालीश्वर मंदिर स्थित है। इस नगरी में एक कृषक परिवार में वायलार का जन्म हुआ। अनंत कृपालु भगवान शिव के ये अनन्य भक्त थे। अपने हृदय में इन्होंने मंदिर की परिकल्पना करके उसमें ईश की प्रतिष्ठा कर ली। नित्य अपने स्नेह द्वारा वहाँ ज्योतिर्मय दीप जलाते, हृदय में व्याप्त अपूर्व प्रेम के आनंद रूपी अमृत से प्रभु के समक्ष भोग लगाते। प्रभु प्रेम से सदा मग्न रहकर वायलार अनेकानेक वर्षों तक परम सत्य रूप शिव के प्रति निष्ठापूर्वक पूर्ण समर्पण से भक्ति करते रहे। उनकी यह भक्ति मानसिक पूजा के रूप में जीवन भर चलती रही। कवि सुंदरर ने इनके विषय में तिरुतोंड तो गए पदों में इनका स्मरण करते हुए कहा है, मैं प्राचीन मैलई के वायलार के दासों का भी दास हूँ। मैलई जहाँ सागर द्वारा बहाकर लाए गए शंखों की उज्ज्वल कांति से रात्रि का अंधकार भी दूर हो जाता है। कवि चेक्किलर अपने पुराण में वर्णन करते हैं कि इस प्रकार की निरंतर सेवा अर्चना और प्रेम के प्रभाव से भक्त वायलार को प्रभु चरणों की छाया का सौभाग्य मिला और शिवलोक में नित्यावास का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। वायलार अपने मन में ही शिव की प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा करते रहे। इसीलिए वह एक परम उच्च कोटि के संत या नायनमार हैं। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Maha Mandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: Hari Om. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगींद्रमतास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमतास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे।

दो मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। पहले पंक्ति हम बोलेंगे, उसके बाद आप लोग बोलना।

0: कीर्तये हर हर महादेव। ओम ओम ओम। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित सायंकालिक विशेष प्रवचन की ये श्रृंखला आज जून 16 तारीख 2012 आज से लेकर लगातार ये 28 तारीख तक शिवानंद लहरी के विषय में आधार पर ये प्रवचन ये श्रृंखला चलेगी। जैसे कि आप लोगों ने पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा, प्रवचन का विषय होगा आदि गुरु भगवान शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी के आधार पर प्रवचन करेंगे। भारतीय दर्शन शास्त्र में, भारतीय आध्यात्मिक क्षेत्र में आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारतीय आध्यात्मिक जगत के मुमुक्षुओं, श्रद्धालु, भक्त, जिज्ञासु, हम सब उनके ऋणी हैं। भारत भूमि उन महापुरुषों का बहुत ऋणी रहा और आगे भी रहेगा। शंकराचार्य जी ने हमारी वैदिक सनातन के उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके कृतियों को, उनके सिद्धांतों को, उनके भाष्य ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक पठन पाठन, अध्ययन और श्रवण निरंतर हमसे होता रहे, यही भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के प्रति हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि है। इसके बढ़कर और कोई श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम नहीं है। विशेष करके हम सन्यासी समाज तो उनके बहुत ऋणी हैं। वास्तव में शंकराचार्य जी कौन थे, सामान्य चिंतन करने वालों के लिए वह एक बहुत बड़े दार्शनिक हो सकते हैं, लेकिन हम उनको केवल दार्शनिक के रूप में नहीं देखते। दार्शनिक तो बहुत हुए हैं इस पृथ्वी में, बहुत दार्शनिक हुए हैं, बहुतों का नाम है। पूर्वीय दार्शनिक, पश्चिमी दार्शनिक, अरस्तु, कांट इत्यादि भी दार्शनिक ही कहते हैं उन लोगों को भी। लेकिन उनको कभी भी आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्मरण नहीं करते, और उनके अनुयायी भले उनको गुरु के रूप में स्मरण करें, लेकिन अवतार के रूप में तो स्मरण करते ही नहीं। लेकिन हमारी संस्कृति सभ्यता रही है कि हम उन महान दार्शनिकों को, उन चिंतकों को साक्षात परमात्मा के अवतार के रूप में ही स्मरण करते हैं। साधारण मनुष्य अप्रतीत प्रतिभा के धनी होने मात्र से हम उनको स्मरण नहीं करते। हमने तो शंकराचार्य जी को माना है शंकरम शंकराचार्य। साक्षात भगवान शिव ही शंकराचार्य जी के रूप में अवतरित हुए हैं, यह हमारी मान्यता है। केशवम वादरायणम, साक्षात भगवान विष्णु ही वादरायण के रूप में अवतरित हुए हैं। इस दोनों का अवतार मानो ऐसा अवतार हुआ है कि दोनों ने सलाह करके, दोनों ने विचार विमर्श करके अवतार लिया, ऐसा लगता है। सूत्रभाष्य कृतो वंदे, क्योंकि भगवान विष्णु ने वादरायण के रूप में अवतार लेकर सूत्रों की, ब्रह्म सूत्रों की रचना की, तो भगवान शिव ने शंकराचार्य जी के रूप में अवतार लेकर उन सूत्रों की व्याख्या की है, भाष्य लिखा है। इसलिए हम दोनों को भगवान के ही रूप में स्मरण करते हैं, केवल दार्शनिक के रूप में स्मरण नहीं करते हैं। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी का इतिहास देखो, ऐसा अद्भुत इतिहास भारत भूमि में मिलना बहुत मुश्किल है। छोटे से उम्र में, अपनी आयु में उन्होंने अद्भुत दार्शनिक संपदा का खजाना भारत भूमि को दिया। आध्यात्मिक चिंतन करने वाले मनुष्यों के लिए इतने खजाना दिए है, कभी खत्म न हो, उनके चिंतन की प्रक्रिया कभी समाप्त न हो, हजारों लाखों वर्ष तक भी वह संपदा कभी खत्म नहीं होगी। उस प्राचीन काल, आजकल की तरह शायद भौतिक साधनों से संपन्नता नहीं थी भारत भूमि में, पैदल यात्रा करते हुए पूरे भारत भूमि में अध्यात्म का प्रचार प्रसार और दार्शनिक ग्रंथों की रचना और ऐसे क्रांतिकारी समाज सुधार का उन्होंने काम किया है कि भारत भूमि कभी भी उनके इस देन से उऋण नहीं हो सकता है। बड़े विलक्षण प्रतिभा, ऐसे अवस्था में उनका अवतार हुआ है। भारत के इतिहास को हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जब अनात्मवादी शून्यवादियों का ऐसा बोलबाला था कि न तो कोई वैदिक कर्म हुआ करते थे, न वेद को प्रमाणित वेद को प्रमाण मानने मानते थे, वेद और वैदिक सिद्धांत का ही अपलाप हो चुका था, वेद प्रतिपादित कोई यज्ञ याग आदि नहीं होते थे, बंद हो गए थे, और वेद प्रतिपादित जो हो श्री विग्रह भगवत विग्रहों की अर्चना पूजा ये सब खत्म हो गया था। सर्वम शून्यम सर्वम क्षणिकम, इस प्रकार का पूरे भारत भूमि में क्या विश्व में क्षणिक विज्ञानवाद और शून्यवाद का प्रचार ऐसा हुआ था। उस अवस्था में भगवान शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। इतिहास में बड़े सुधार भी हुए हैं और बहुत विकार भी हुआ है। एक पक्ष को सुधारते हैं तो दूसरा पक्ष बिगड़ जाता है। ये संसार का नाम है भाई। हमसे लोग पूछते हैं, महाराज ये कुछ लोग तंत्र मंत्र यंत्र करने वाले जो है बलि चढ़ाते हैं, काटमार करते हैं देवी देवताओं के नाम पर, क्या ये सही है, शास्त्र सम्मत है, हमसे पूछते हैं। है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन किस प्रयोजन के लिए ये सब है? शास्त्र सम्मत है, किस प्रयोजन के लिए, उस पर निर्भर करता है। कहते हैं भगवान बुद्ध के अवतार से पहले पूरे भारत भूमि में तंत्र शास्त्र का ऐसा साम्राज्य था, तंत्र विद्या का ऐसा साम्राज्य था कि हर व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए तंत्र का सहारा लेता था, तंत्र का आश्रय लेता था। और वो तंत्र ऐसा तंत्र था कि कापालिक तंत्र था, वामाचार तंत्र था। उसका ऐसा बोलबाला हो गया था शाक्त संप्रदाय का जबरदस्त प्रचार था, और भैरव और शाक्त शक्ति की पूजा, दोनों उग्र देवता है, दोनों तामसिक हैं, क्योंकि यक्षानुरूप हो बलि, ये वेद का नियम है। जिस प्रकार के गुण से युक्त देवता है उसके उसी प्रकार की पूजा करो, उसी साधनों से पूजा करो। सात्विक देवता के लिए सात्विक साधन और सात्विक विधि से पूजा करो। देवता यदि राजसिक है तो उसको राजसिक साधन और राजसिक विधि से पूजा करो। देवता यदि तामसिक है तो तामसिक साधन और तामसिक विधि से पूजा करो। तो क्योंकि तंत्र में विशेष करके तमोगुण का प्रयोग करते हैं, मारण मोहन उच्चाटन त्राटन इत्यादि, उसी को अविचार कहते हैं। पहले ऐसा समय निकल गया था, प्रचार था कि पूरे समाज में अपने को शक्ति संचय करने के लिए सब इसी का आश्रय लेते थे और इसी के माध्यम से वो अपने आप को शक्तिशाली मानते थे। परिणाम यह होता था कि उस समय में बलि की बहुत बलि प्रथा बहुत प्रचलन था। भैरव की उपासना करो और बलि चढ़ाओ, काली की उपासना करो बलि चढ़ाओ, बलि ही उपासना का पूर्ण अंग था। तो चारों तरफ काट मार। तो इस प्रकार के कृत्यों को रोकने के लिए भगवान नारायण स्वयं बुद्ध के रूप में अवतार लिया और उन्होंने सब रोकना शुरू किया कि ये बलि क्यों कर रहे हो, पूजा के नाम पर है, ये हिंसा क्यों कर रहे हो, प्राणी की हत्या क्यों करते हो, ये गलत काम कर रहे हो तुम लोग। तो सब लोगों ने बुद्ध को जवाब दिया, कौन कहता है हम गलत काम करते हैं, वेद ने लिखा है ये देख लो, वेद के अनुसार हम कर्म कर रहे हैं, वैदिक कर्म है, शास्त्र प्रमाण है, ऐसा जवाब देने लग गए। तो भगवान बुद्ध को यह कहना पड़ा कि हिंसा की आज्ञा देने वाला वेद वेद ही नहीं, वो शास्त्र नहीं हो सकता है, इसलिए वेद गलत है। तो एक प्रयोजन को लेकर उन्होंने ये बात कही थी कि वैदिक हिंसा को रोकने के लिए, बलि को रोकने के लिए उनको यहां तक कहना पड़ा, जिस शास्त्र की दुआई देते, जिस शास्त्र का प्रमाण देकर तुम इस प्रकार के काटमार में प्रवृत्त हो रहे हो तुम लोग, वो शास्त्र ही गलत है। परिणाम ये हुआ कि हिंसा तो रुक गया। तो शास्त्र ही गलत है कहा तो फिर वेद ही गलत हो गया। तो ऐसा समाज में ऐसे धारणा प्रतिष्ठित हो गई कि वेद गलत है, तब वेद के कहे हुए सारे कर्म गलत है। परिणाम हुआ कि यज्ञ बंद हो गए, मंदिर तोड़े गए, मूर्ति तोड़े गए, मंदिर मूर्ति सबकी पूजा आजा सब कुछ अर्चना सब बंद हो गए। सर्वम शून्यम सर्वम क्षणिकम, इस विषम परिस्थिति की सृजना हुई। तब भगवान शंकर शिव ने विचार किया, एक प्रयोजन को पूरा करने के लिए विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया, बहुत हिंसा का तांडव परिस्थिति को तो रोका, लेकिन परिणाम हुआ कि सारा वैदिक कर्म रुक गए, यज्ञ रुक गया, पूजा रुक गई। तो क्या करना चाहिए? तो फिर उसको पुनः प्रतिष्ठा करनी चाहिए। फिर शंकर भगवान शिव शंकराचार्य जी के रूप में अवतार लेकर कहा कि नहीं, वेद सही है, वैदिक कर्म सही है, इसका मतलब यह नहीं कि मार काट सही है। शक्ति की आवश्यकता है, शक्ति की उपासना करनी चाहिए, लेकिन शक्ति की उपासना करने की विधि दूसरी विधि भी है। ये समयाचार की प्रतिष्ठा आदि गुरु शंकराचार्य जी का देन है। तंत्र शास्त्र में, शक्ति उपासना में, तंत्र शास्त्र में समयाचार की उपासना के देन ये आदि गुरु शंकराचार्य जी का देन है। जहां कोई काट नहीं, मार नहीं, कोई बलि नहीं, कोई तामसिक का कोई अंश ही नहीं है, शुद्ध सात्विक विधि से शक्ति की उपासना करते हैं। तब राजराजेश्वरी ललिताम्बा की पूजा आरंभ करा दिया। तब उन्होंने सौंदर्य लहरी की रचना करके शक्ति की उपासना करनी हो तो इस विधि से करो, काटमार गलत है। तब पूरे भारत भूमि में भ्रमण करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सब जगह वैदिक कर्मों की पुनः प्रतिष्ठा की, वेद का उद्धार किया, वैदिक कर्म आरंभ कराई और सब टूटे हुए मठ मंदिरों का पूर्ण जीर्णोद्धार किया। उसी क्रम में आप लोग इतिहास पढ़ते हो। आज जो बद्री विशाल हम लोग पूजा करते हैं, दर्शन करने जाते हैं, उन्हें अनात्मवादी शून्यवादियों ने तोड़कर फेंक दिया था अलकनंदा में। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जाकर उस मूर्ति को खोजा और पुनः मंदिर की प्रतिष्ठा की। आज जो श्री विग्रह बद्री विशाल भगवान का है वो शंकराचार्य जी के हाथ से प्रतिष्ठा की हुई है, नहीं तो वो था नहीं, फेंक दिया तोड़कर। इसी तरह काठमांडू में जो पशुपतिनाथ भगवान है वह भी अनात्मवादी शून्यवादियों ने तोड़कर फेंक दिया था, खत्म था। शंकराचार्य जी गए, फिर पशुपति भगवान का पुनरुद्धार किया, जीर्णोद्धार किया, पुनर्प्रतिष्ठा की। आज इस बात को सर्वमान्य रूप में यदि माना जाए तो 1250 वर्ष हो गए, लेकिन उनके बारे में कुछ लोग पूरा 2400 वर्ष मानते हैं। भगवान बुद्ध से 100 वर्ष पश्चात शंकराचार्य जी का अवतार हुआ है ऐसा कुछ लोग मानते हैं, इसलिए लगभग 2400-2500 वर्ष हो गया शंकराचार्य जी का। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, 1250 तो सभी लोग मानते हैं, निर्विवाद है, पश्चिमी और पूर्वीय सभी दार्शनिक लोगों ने 1250 वर्ष पहले के इतिहास को, शंकराचार्य जी के इतिहास को माना है। यह शंकराचार्य जी का देन है। बहुत प्रौढ़ ग्रंथों की रचना और भाष्यों की ग्रंथ की रचना, सारे उपनिषदों पर, एकादश उपनिषदों पर भाष्य ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र जैसे न्याय ग्रंथ पर भाष्य की रचना, लघु प्रस्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की भाष्य की रचना हुई है, गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। हमारे दार्शनिक वेदांत दर्शन में इन तीन ग्रंथों को लघु प्रस्थान कहते हैं, प्रस्थान त्रय, तीन प्रस्थान। प्रस्थान का अर्थ होता है मार्ग, प्रस्थीयते इति प्रस्थान, जिसके माध्यम से, जिसके आधार पर हम चल सकें वो प्रस्थान। हमको पहुंचना है मोक्ष पर्यंत, और उस मोक्ष पर्यंत पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग क्या है, तो श्रुति, स्मृति और न्याय। उपनिषद श्रुति प्रस्थान है, गीता स्मृति प्रस्थान है और ब्रह्मसूत्र न्याय प्रस्थान है। इसलिए शंकराचार्य जी बार बार हर जगह ये तीन शब्द का प्रयोग करते हैं, श्रुति स्मृति न्याय युक्ति। इस पर विचार करो तो ये तीनों ग्रंथों पर उन्होंने भाष्य लिखा। इसके अलावा शंकराचार्य जी के अनेक मौलिक रचनाएं हैं, अपनी मौलिक रचनाएं, स्वतंत्र मौलिक रचनाएं। उपदेश साहस्री इतना बड़ा ग्रंथ है जिसमें 1000 उपदेश संकलित हैं। उस ग्रंथ का नाम ही है उपदेश साहस्री, 1000 उपदेश है मुमुक्षुओं के लिए। उसके बाद अनेक सिद्धांत बिंदु आदि हैं, 10 श्लोकी आदि हैं, दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम, विवेक चूड़ामणि, अपरोक्ष अनुभूति, देख लो पंचीकरण, अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। ये सब तो दार्शनिक है, ये सब ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ है। इन सबको देखकर बहुत लोग ये कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी शुष्क वेदांती है, नीरस वेदांती है, दार्शनिक हैं लेकिन नीरस हैं, उनके दर्शनों में कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं। ये आक्षेप भी लगाते हैं व्यक्ति, लेकिन वो लोग एक बात भूल जाते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी के विचारों में, चिंतन में भक्ति रस का इतना ओतप्रोत है, इतना भरा हुआ है कि इतना सागर है। भगवती जगदम्बा परांबा की उपासना के लिए शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी नामक 100 श्लोकों की सौंदर्य लहरी नामक एक ग्रंथ की रचना कर दी।
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya.

शन्नो भवतु भुवनस्वयस्पतिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, प्रेमपुरी जी महाराज की। विचार कर रहे श्री मेहमान को पर, पहले पाठ कर लें। सातवां आठवां श्लोक है, सातवें से पाठ कर लें। त्रयी सांख्यम योग पशुपति

0: निहितं नहि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति।
1: भगवान शंकर के विषय में यहां तक पुष्पदंताचार्य जी ने कह दिया, नहीं स्वात्मा राम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। जो अपने स्वरूप में रमण करता है वह कभी भी विषय मृग तृष्णिका के चक्कर में नहीं पड़ता न भटकता है। सातवें श्लोक में बतलाया गया था कि त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति च, एक ही साध्य को प्राप्त करने के लिए अनंत रास्ते हैं। इसी बात को योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, यथा विमत ध्यानाद्वा, आपको जो बहुत अधिक पसंद हो, प्रिय हो, अनुकूल हो, सरल हो, उस किसी भी एक रास्ते से चल करके अपने जीवन का जो लक्ष्य है, अशेष दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, उसको प्राप्त कर सकते हैं। अनवस्थित वह अनंत है, एक दो तीन चार नहीं है। वेदांत में भी कहा है, यजा यया भवेत पुंसाम वित्पत्ति प्रत्यगात्मनि सासा कल्पना साध्वी साच अनवस्थिता। यया यया का अर्थ है जिस किसी भी साधन के द्वारा, मार्ग के द्वारा, विचार के द्वारा आपके अंतःकरण में जीव ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान हो जाए, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, सासा कल्पना, चाहे वह कैसी भी कल्पना, कैसा भी रास्ता हो, मार्ग उपासना हो, पद्धति, वही सही है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो हमारे यहां अनेक रास्ते हैं वहां पहुंचने के लिए। अन्य मजहब में ऐसा स्वातंत्र नहीं है। इस्लाम कहता है कि बस कुरान साहब, कुरान में जैसा मोहम्मद साहब ने फरमाया है वैसे चलो, अन्यथा नरक मिलेगा। ईसा मसीह ने जैसा बाइबल में कहा है बस वैसे ही चलो, डंडे के बल से है। पर अपने यहां इस प्रकार का जो है कोई अंध परंपरा नहीं है, बल्कि रुचिनाम वैचित्र्यात्, रुचि शब्द का तेज होता है, तेज का संस्कार में लक्षण है। प्रत्येक प्राणियों के संस्कार अलग हैं, कर्म वासनाएं अलग हैं, क्योंकि यह शरीर प्रारब्ध कर्म से निर्मित होता है। कर्मों का तीन विभाग किया है, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। जिन कर्म विशेष कर्मों के समुदाय से यह शरीर बनता है उसका नाम है प्रारब्ध। और सभी जीव के प्रारब्ध अलग हैं, कर्म वासना संस्कार अलग हैं, इसलिए रास्ते भी अलग अलग हैं। जैसे कि काशी विश्वनाथ पहुंचना हो तो कलकत्ते से चलेंगे तो उसका रास्ता अलग है, कलकत्ते से चलेंगे तो गया होकर के काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे, बेंगलुरु से चलेंगे तो दिल्ली होकर के बनारस पहुंचेंगे। पहुंचना है सबको वाराणसी विश्वनाथ का दर्शन करना है, परंतु रास्ते अलग अलग हैं, गंतव्य एक है। इसी प्रकार से यहां बदला दिया कि यहां पर कई तरह के प्रस्थान हैं, त्रयी है, सांख्य, योग, पशुपति मत है, वैष्णव, सबके भिन्न भिन्न होने पर भी सबका मंदिर प्राप्तव्य एक परमात्मा का साक्षात्कार है। कोई भी रास्ते अपने आप में परिपूर्ण नहीं होते हैं, रास्ते तो सारे अधूरे होते हैं। रास्ते का मकसद होता है मंजिल तक पहुंचाना, इसलिए हमारे यहां रास्ते के विषय में कोई भी मतभेद नहीं है, बल्कि लक्ष्य सबका एक है, जैसे भी वहां पहुंचे। ऋजु कुटिल नाना पतजुषाम, ऋजु बोलते सरल, कुटी बोलते टेढ़ा। ये जो भोले भाले मन वाले व्यक्ति हैं, जो अपठित हैं, ये सीधे रास्ते से जाते हैं, सीधे मतलब राजमार्ग मार्ग का अवलंबन लेते हैं। जब हम लोग पदयात्रा करते थे बद्रीनाथ की, 1993 में किए थे, तीन महात्मा थे, उसमें से कुछ ऐसे थे जो भोले भाले पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो तो सीधा रोड से जाए राजमार्ग से बद्रीनाथ पहुंच गए, पर हम लोग अपने बुद्धि से चलते थे, कई बार भटक गए। लोगों से पूछते कि ये रास्ता कहां जाएगा, बस सीधा जंगल में पहाड़ पर चढ़ जाते। अब पहाड़ पर चढ़ने के बाद आता भटक जाए, कोई मिलता बतलाने वाला नहीं, तो कई बार ऐसा तीन चार बार चक्कर पड़ गया। परंतु जो राजमार्ग से सड़क से जा रहे थे वो हमसे पहले पहुंच गए, दो दिन पहले, क्योंकि हम लोगों ने अपने बुद्धि का विवेक का प्रयोग किया कि ये रोड ऐसे घूम के जा रहा, सीधा चढ़ के नीचे उतर जा पहुंच जाएंगे। परंतु कई बार अपनी बुद्धि फेल हो जाती है। ये जो बड़े पढ़े लिखे हैं न्याय वेदांत वैशेषिक, ये कुटिल रास्ता अपना दे, कुटिल मतलब कि जो बहुत जो है टेढ़ा है। परंतु भोले भाले जैसा गुरु ने बताया, आचार्य ने उस बताए रास्ते पर चलकर आराम से परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं। समर्थ रामदास जी कहीं यात्रा पर जा रहे थे, जाते वक्त उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया, समझाया, देख मैं 25 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं और तू ठाकुर जी की बढ़िया सेवा करना, सब विधि बदला दी, किस प्रकार से भगवान की पूजा करना, भोग लगाना, आरती उतारना, इसके बाद मंदिर बंद करना, गौशाला संभालना, सब समझा दिया। जब गुरु ही चले गए तो स्वाभाविक है भक्त भी आना बंद कर दी। एक दिन बेचारा अकेले परेशान हो गया, सुबह पहले झाड़ू लगाया, फिर गौशाला की सफाई किया, इसके बाद भगवान के नैवेद्य तैयार किया, करते करते 3 बज गया। 3 बजे ले गया भगवान का भोग लगाया, बहुत थक गया था। उसको पता नहीं कि केवल भोग की थाली हटा लेते हैं। 1 घंटा प्रतीक्षा किया कपाट बंद करके, भगवान भोग लगाए, फिर देखता कि भगवान अभी तो खाए नहीं। रोने लगा कि क्या बात है, गुरु जी भोग लगाते तो आप तो ग्रहण करते, लगता है कुछ हमसे नाखुश है। उसके भाव को देख करके भगवान ने भोग लगाया, इसके बाद भोग की थाली लाया, भोजन किया। दूसरे दिन उसने सोचा कि अब मैं अकेले हूं, अकेले तो होता नहीं, जाके हनुमान जी से बोला, लक्ष्मण जी से, कि तुम लोग दिन भर ही बैठे रहते हो, बैठे बैठे तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए कम से कम कुछ काम करना चाहिए। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि बिना परिश्रम के ये जो है ना पेट खराब हो जाता है, हाजमा खराब हो जाती है। देखो मैं अकेले परेशान हूं, जब गुरु जी थे तो बहुत लोग आते थे तो चिंता नहीं थी, तो ऐसा कुछ हमारे सहयोग करो। अब वहां से हनुमान जी उठे, हनुमान जी अपना बर्तन मालने लगे, झाड़ू लगाने लगे, लक्ष्मण जी को लगा दिया गौशालय में। सीता जी कहा कि माता जी आप जो है ना बढ़िया पतली रोटी बना लेती होंगी, मुझे तो अभ्यास नहीं रोटी बनाने का, पहले जो है भगत लोग आते थे बनाते थे माताएं, अब तो कोई नहीं आता। सीता जी चौके में रोटी बनाने लग गई। भगवान राम बोले मैं भी चलूं, बोले नहीं आप यहीं रहो, क्योंकि मंदिर खाली हो जाएगा, कोई भगत आ जाएगा तो फजेती हो जाएगी। राम जी को कहा कि आप यहीं मंदिर की शोभा बढ़ाओ, अपने सब सेवा कर लेंगे। हर दिन ऐसे ही काम चलता रहा। जब 25 दिन के बाद गुरु जी आए तो क्या देखते हैं कि हनुमान जी बेचारे झाऊ लगा रहे हैं, लक्ष्मण जी गौशाला की देख रेख कर रहे हैं, सीता ही रोटी बना रही। समर्थ रामदास जी अपने शिष्य के दिव्य भावना को देख के बहुत प्रसन्न हुए, बोले तेरे कृपा से भगवान का साक्षात कम से कम दर्शन हुआ। जो भोले भाले हो तो उनके मन में जरा सा भी शंका नहीं होती है, रिजु सरल रास्ते चलते हैं, जैसा गुरु जी बता दिए वैसा ही करना है। परंतु जो पढ़े लिखे हो तो उनके मन में बड़ा संशय होता है, कि जो है ये रास्ता सही है कि नहीं है। हनुमान जी का मंत्र जपूं कि दुर्गा जी का, कि जो है राम जी का, कि कृष्ण जी का, कि शिव जी का, ऐसे बहुत हमको लोग मिले। जैसे कि हमें जाना है बद्रीनाथ, यहां से दिल्ली गए, दिल्ली जाने के बाद सोचे भाई अभी तक पहुंचे नहीं, फिर वापस आ गए। इस तरह से बार बार जाएंगे आएंगे, कभी दिल्ली से वापस, कभी जोशी मठ से, कभी हरिद्वार से, कभी ऋषिकेश से, कभी रुद्रप्रयाग से, तो पहुंच नहीं पाएंगे। यदि कंटिन्यूटी बनी रहेगी, मतलब तारतम्य निरंतरता, तब तो पहुंच जाएंगे। तो जो कुटिल मार्ग से चलते हैं वे लोग प्रायः कहते हैं कि संशय कारण से भटक जाते हैं, परंतु जैसे भी चले आदमी वहीं पहुंचता है। जिस प्रकार से एक ही विद्युत शक्ति ऊर्जा है, वही ऊर्जा ट्यूबलाइट से उज्जवल प्रकाश दे रही है। हरा बल्ब होगा तो हरा प्रकाश आएगा, नीला होगा तो नीला। यदि मान लो किसी के पास केवल ट्यूबलाइट हो और आपको विद्युत समझाना हो, तो वह व्यक्ति यही बतलाएगा कि जिसके द्वारा ये उज्जवल प्रकाश आ रहा इसका नाम है ऊर्जा, विद्युत शक्ति। जिसके पास टेप चल रहा वह व्यक्ति बोलेगा इससे आवाज आ रहा उसी का नाम है विद्युत शक्ति। जिसके पास पंखे हैं वह बदलाएगा इससे कि हवा आ रही उसका नाम विद्युत शक्ति। अब जो है जो व्यक्ति जिस माध्यम से समझा उसी रास्ते को बदलाता है, परंतु समझने वाले को भ्रम हो जाता है कि विद्युत से हवा आती है कि प्रकाश आता है कि शब्द आता है। विद्युत से सब कुछ आ सकता है, वह तो उपाधि का यंत्र का भेद है। इसी प्रकार से जो आचार्य जिस रास्ते से परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं वे उसी रास्ते को बदलाते हैं और कहते भी हैं कि परम इदम अधः पथ्यम, जो यहां लिखा सातवें श्लोक में, कि उस रास्ते से यह श्रेष्ठ है। क्योंकि जो आदमी जिस रास्ते से गया होता है वह उसको सुगम होता है, इसलिए वे आचार्य उसी रास्ते को बतलाते हैं। तो सारे रास्ते श्रेष्ठ हैं, कोई भी किसी कम नहीं है, बशर्ते हम उस पर चल पड़े। तो सातवें श्लोक में यहां पर यह बतला दिया कि मनुष्य को सन्मार्ग में चलना चाहिए, चाहे किसी रास्ते चले उस पर संशय न करे। क्योंकि भगवान ने कहा संशयात्मा विनश्यति, ये संशय हो गया तो वहीं पर विचारने लग जाएंगे कि चले कि न चले। प्रारब्ध कर्म के कारण से भले ही मनुष्य को विलंब हो, परंतु पुरुषार्थ में शैथिल्य नहीं होना चाहिए। प्रारब्ध का संबंध इस देहत्रय से होने के कारण से मनुष्य कई बार भजन करता है तो मन नहीं लगता है, विक्षेप होता है। परंतु यदि प्रबल पुरुषार्थ होगा तो प्रबल पुरुषार्थ होने से प्रारब्ध भी क्षीण हो जाता है। भगवान शंकराचार्य की जीवनी में आता है, उनकी आयु मात्र 8 वर्ष की थी, परंतु जिस लिए धरातल पाए थे वे काम अपना जारी रखे, 8 से 16 हो गए, 16 से 32। तो मनुष्य जीवन में आने के बाद प्रारब्ध से भले हम अपना कर्म करें, यदि पुरुषार्थ करें तो प्रारब्ध भी परिवर्तित हो जाता है। महाशिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि के दिन प्रायः काशी विश्वनाथ में सारे देवी देवता आते हैं भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए, ये पुराणों में प्रसिद्ध चर्चा है। एक बार महाशिवरात्रि के दिन भगवान विष्णु, यमराज, सारे देवता वहां उपस्थित हुए। भगवान विष्णु शिव जी की पूजा में तल्लीन थे, पीछे से यमराज आए। यमराज आए तो अपने भैंसे को उन्होंने बाहर खड़ा कर दिया, जाकर देखे तो लंबी कतार है, भगवान विष्णु रुद्राभिषेक कर रहे हैं। खड़े खड़े यमराज ने ऊपर देखा, ऊपर 2 पक्षी थी कबूतर, आपस में कीड़ा कर रहे थे। यमराज ने उनके भाल को पढ़ा, उस पर

कैसे हो सकता है? लगता है कि ब्रह्मा जी की लेखनी जो है ना कुछ फिसल गई, ऐसा सोच के जोर से ठहाका मार के हंसने लग गए। उनके हंसी को देखकर दोनों पक्षियां डर गईं, चुप शांत बैठ गए। इधर जो है गरुड़ जी अपना चारों तरफ घूम कर देख रहे थे। जब पक्षियों को देखा तो पूछे, क्योंकि गरुड़ महाराज पक्षियों के राजा हैं और राजा का परम कर्तव्य है कि अपने प्रजा का ख्याल रखे। गरुड़ जी ने पूछा कि क्या समाचार है? पक्षियों ने कहा, क्या समाचार बताएं, अभी यमराज जो हमारी तरफ घूर कर देख रहे थे। गरुड़ ने कहा, इससे क्या हो गया? बोले कि लगता है कि हमारी मौत बस सामने आ गई, इसलिए हम तो चुपचाप बैठे हैं। गरुड़ ने कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देता हूं जहां से जो है न यमराज पहुंचे न कोई दूत पहुंचेंगे। बस तुरंत गरुड़ जी ने अपने पीठ पर बैठाया, लोकालोक पर्वत पर जाकर छोलाए, छोड़कर तुरंत दौड़ करके जैसे ही मंदिर में प्रवेश किए, यमराज खड़े हैं, अभी देख रहे हैं कि भगवान विष्णु पूजा में ही लगे हैं। संतोष हुआ कि मैं समय से आ गया। इधर यमराज ने पूछा कि तुम इतने थके हुए क्यों, लंबी श्वास क्यों ले रहे हो? गरुड़ जी ने व्यंग किया कि आपको देखकर के तो बड़े बड़े के छक्के छूट जाते हैं, मैं भी तो पक्षीराज ठहरा। यमराज ने कहा कि भगवान के भक्तों के ऊपर हमारी विद्या नहीं चलती, मैं तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गरुड़ जी ने कहा, यह बात तो सही है, आप हमारा नहीं बिगाड़ सकते, परंतु हमारे प्रजा को तो नष्ट कर सकते हैं। यमराज ने कहा, हम तो आपकी प्रजा किसी कुछ नहीं की आज तो। बोले, अभी आपने हमारे प्रजा पक्षियों घूर के देख रहे थे। बोले कि हाँ, देख तो रहा था, परंतु मैं उनके भाल को पढ़ रहा था, ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं उनको जो है नष्ट करूं या हम लोग ले जाऊं। गरुड़ जी ने कहा, भाल पर क्या लिखा था? बतला दिया कि आज ही के दिन लोकालोक पर्वत की बिल्ली उनको खाकर तृप्त होगी, ऐसा भाल पर लिखा था। यमराज ने कहा कि यही तो मैं सोच रहा था कि लोकालोक पर्वत पर ये पक्षी कैसे जाएंगे और वहां से बिल्ली यहां कैसे आएगी, परंतु आपने तो हमारा काम पूरा कर दिया, आपने पक्षियों को वहां पहुंचा दिया, अब बिल्ली उनको खा ली होगी, पेट भर गया होगा, पक्षी मर गए होंगे। देखो, गरुड़ जी ने विधाता के लेख को बदलने के लिए सहयोग किया ताकि इनका बचाव हो, उनका मकसद था रक्षा हो यमराज से, परंतु उल्टा हो गया, वे तो विधाता के कार्य में सहयोगी बन गए। उनका मकसद था इनको यमराज से बचाना है, सोच रहे थे कि लोकालोक पर्वत पर बिल्ली जा नहीं सकती है, खा नहीं सकती, आराम से वहां रहेंगे, पर हो गया उल्टा, मौत उनकी पहले से वही बैठी थी। ये जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध जो बहुत बलवान होता है उसको तो कोई बदल नहीं सकता है, परंतु सामान्य प्रारब्ध को मनुष्य उपासना साधना से बदल सकता है, ऐसा इतिहास में पुराण में ये बातें मिलती हैं। जरा आप आठवां श्लोक देख लें, जिसमें से चार शब्द पर विचार हो चुका है। महोक्ष, महोक्ष का अर्थ है वेदों का जो प्रधान ओंकार, वेदानाम त्रिपदासारम तस्याम ओंकार उच्यते, ओम नामासी तुमेवासी आत्मा देतो निरंजन। वेदों का सार ओंकार है, ओंकार के द्वारा ही हम परमात्मा को उपलब्ध होते हैं। कठोपनिषद में आता है, एतद् देवा आलंबनम श्रेष्ठ, एतद् देवा आलंबनम परम, इसी आलंबन से अपर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं और पर ब्रह्म को। यदि आपकी भावना संसार विषयणी है तो ओंकार के द्वारा संसार को उपलब्ध होते, अपनी कामनाओं को पूरा करते हैं। यदि निष्काम है तो इसी आलंबन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो महोक्ष का अर्थ है जो वेदों में ऋषभ है, ओंकार है, इसी आलंबन से आदमी शिव तत्व को उपलब्ध होता है। खटवांग का अर्थ मोक्ष, परशु का अर्थ हमने किया था ये विवेक, नित्यानित्य विवेक, ये परशु है, जिसको असंग शास्त्र भी गीता में कहा गया है।

0: अजीनम का अर्थ है नाम रूपात्मक, ये जो आपका हाथी का समझो कि ये चमड़ा है, ये वस्त्र है। भस्म का अर्थ था चिता भस्म, नाम रूपात्मक ये जो आवरण है जीव का, यही समझो कि आपका भस्म है, देहाध्यास की निवृत्ति। जब नाम रूपात्मक प्रपंच का बाध हो जाता है, नाश हो जाता है, तो केवल एक चैतन्य ज्ञान बचता है। जैसे कोई वस्तु जल जाती है तो जलने के बाद राख बचती है, ऐसे ही ज्ञान के द्वारा नाम रूपात्मक प्रपंच का जब बाध हो जाता है तो केवल एक अधिष्ठान ज्ञान बचता है। वही ज्ञान भगवान शंकर का श्रृंगार है, भस्म है। फणिना, फणिना का होता है सांप। भगवान शंकर इस सांप को अपना आभूषण बनाया, सर में भी बांध रखे जूला की जगह, हाथ में भी है कंगन की जगह, कान में कनफूल की तरह भगवान शंकर का आभूषण इस सांप है। इस सांप का अर्थ क्या होता है? फणिना ना, सांप का भी एक विलक्षण अर्थ है, रामायण में भी आता है। गरुड़ जी कहते हैं संशय सर्प ग्रसेव मोहि ताता, ताहि उपजहि दुख बहु ब्राता। जो गरुड़ जी सांपों के कट्टर दुश्मन, सांप जिनका आहार, वे गरुड़ जी कह रहे हैं कि हे भाई, मुझे संशय रूपी सांप ने ग्रस लिया है, डस लिया है। इस संशय यहां पर सांप है, उसी संशय रूपी सांप को भगवान शंकर ने अपने कानों का भूषण बनाया है। जब साधक को परमात्मा के ऊपर संशय होता है, श्रेय के ऊपर, कि सत्य संसार है या परमात्मा है, इस प्रकार का संशय होता है। जब वेदांत का श्रवण करते हैं, श्रवण हम कान से करते हैं, तो जब मनुष्य वेदांत का श्रवण करता है तो संशय रूपी सांप आभूषण बन जाता है। दूषणोपि भूषणायते, हलाहल विष जो संसार को नष्ट कर सकता है, वही विष भगवान शंकर के कंठ का आभूषण बन गया। जो टेढ़ा मेढ़ा चंद्रमा है उसको भगवान ने समझो कि अपने सर पर धारण किया, विशोभित हो गया। न्यायिक दार्शनिकों ने मंगलाचरण में लिखा है कि चूड़ाकृत विधु बलैकृत वासुकी भव भवत भव्याय लीला तांडव पंडित। न्याय दर्शन का मंगलाचरण है। चूड़ामणिकृत विधु, चंद्रमा को तो अपने सर का समझो कि एक तरह से सजावट के लिए चूड़ामणि बनाया। बलैकृत वासुकी, और उस चूड़े को पहले माताएं बांधती थी ना ऊपर, तो उस चूड़ा के ऊपर बलई मल्ल की वासुकी नाग से उसको बांध दिया। ये वासुकी क्या है? वासुकी शब्द का अर्थ है वासयति सर्वान अस्मिन संसारेति वासुकी। वासु शब्द है ना, बस निवासी धातु है, बस निवासी धातु से अर्थ निकलता है वासयति सर्वान अस्मिन संसारेति वासुकी। ये जो जीव का अभिमान है यही समझो वासुकी है, क्योंकि अयम अहमस्मि, यह मैं हूं। जब तक अहंकार होता है, इस अहंकार के भरोसे ही मनुष्य संसार में जीवन यापन करता है।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Atharvana Veda, Saunaka Shaka, Kandam 2, Sukta 20.

सन्त्वमग्ने सूर्यस्य वर्चासा गथा समृषीनाग्यस्तुतेन संप्रियेण धाम्ना समहमायुषा संवर्चासा संप्रजया सज्ञा राजस्पोषेणग्मिषीया।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वील्सि दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम्। देयर आर टू थ्री

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के प्रसंग में छठे स्तोत्र की व्याख्या चल रही है। राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो

0: नमइदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तो अनेक मतवाद हमारे पूर्वीय विचार के प्रसंग में उपस्थित होते हैं। शंकराचार्य कहते हैं, व्यामोह संहारणे माया सत्य विलास क्यों न हो। ईश्वर की माया ही ऐसी है, जब तक उस माया का व्यामोह रहता है तब तक यथार्थ वस्तु का भान नहीं हो पाता है। जिसको जैसा लगता है वैसा ही निश्चय करके कहने लग जाते हैं। तो हमने कल कहा था, दारू के नशे में मस्त हुआ हुआ व्यक्ति यदि वह नशे के प्रभाव से कुछ कहता है तो वह सभी को मान लेना चाहिए, यह जरूरी नहीं है। यदि वह नशे में नहीं है, होश में है, तब वह जो कहता है वो माना जा सकता है। इसी प्रकार के जब तक ये माया का नशा उतरेगा नहीं तब तक व्यक्ति इसी प्रकार के अनेक मतवाद अपने बुद्धि के बल से कहते रहेंगे। अनेक मतवाद क्या है? देहम प्राणमपि इंद्रियाण्यपि चलाम बुद्धिम च शून्यम विदुः। देहम प्राणमपि इंद्रियाण्यपि चलाम बुद्धिम च शून्यम विदुः। ये सब अनेक मतवाद हैं। कुछ लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं, कुछ लोग प्राण को आत्मा मान लेते हैं, और कुछ लोग इंद्रिय समूह को आत्मा मानते हैं, कुछ लोग मन को ही आत्मा मान लेते हैं, कुछ लोग बुद्धि को आत्मा मान लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन सब का जो संघात है, सम्मिलित स्वरूप है, वो आत्मा है मानते हैं। और कुछ लोग कर्ता अर्थात केवल चिदाभास को ही आत्मा मान लेते हैं। ये क्या है? तो बोले भ्रांतः, ये सब भ्रांत हैं। किसके चलते ये भ्रांत हैं? तो बोले माया व्यामोह के चलते भ्रांत हैं। ये माया का व्यामोह कैसे हटे? तो कल विचार किया था कि ये अपने आप हटने वाला नहीं है। व्यामोह अपने आप प्राप्त हुआ है, अपने आप ही हुआ है, लेकिन हटेगा अपने आप नहीं। ये कब हटेगा, कौन हटाएगा इसको? तो बोले गुरु मूर्ति, दक्षिणा मूर्ति। इसलिए एक दिन के प्रसंग में हमने कहा था, भगवान शिव को ज्ञान मूर्ति, शिव को दक्षिणा मूर्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि माया के व्यामोह को हटाने में वह दक्ष है, इसलिए उनका नाम दक्षिणा मूर्ति है। मूर्ति शब्द का अर्थ होता है स्वरूप। कुशल हैं, दक्ष हैं, समर्थ हैं, इसलिए उनका नाम दक्षिणा मूर्ति, गुरु मूर्ति ये रखा गया। उन्हीं मतवाद में ये उपस्थित हुआ था कि सर्वम शून्यम, बौद्धों का एक पक्ष है शून्यवाद। उन लोगों की मान्यता है कि जगत पहले कुछ नहीं था, केवल जगत नहीं था ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं था, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, ब्रह्म भी नहीं था, जीव भी नहीं था, जगत भी नहीं था, सर्वम शून्यम। उससे ये अचानक जगत उत्पन्न हुआ, जीव भाव उत्पन्न हुआ, जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, और बीच में यदि कोई होता है तो यह केवल भ्रांति होती है। एक बात में कोई विवाद नहीं है, वह है भ्रांति। भ्रांति के बारे में किसी के साथ कोई विवाद नहीं है। सभी दार्शनिक लोग भ्रांति को मानते हैं, बुद्धिस्ट भी भ्रांति को मानते हैं। जगत जो दिख रहा है वो शून्य में दिख रहा है। जैसे आकाश कोई वस्तु नहीं है, शून्य है, लेकिन उसमें नीलिमा दिखती है, वो केवल भ्रांति है। बुद्धिस्ट लोग मानते हैं कि जगत सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, सर्वम शून्य, उसी शून्य में से ये जगत उत्पन्न हुआ। इस सिद्धांत पर वेदांत यानी आदिगुरु शंकराचार्य सहमत नहीं है। शंकराचार्य जी का कहना है कि कुछ था, क्योंकि भ्रांति भी निराधिष्ठान नहीं हुआ करता है, किसी न किसी अधिष्ठान में ही भ्रांति होती है, चाहे वह कल्पना जीव की हो, चाहे माया की कल्पना हो, कल्पना का कोई न कोई आधार होना चाहिए। निराधार कोई भ्रांति, कोई कल्पना नहीं हो सकती है। बड़े से बड़े कुशल चित्रकार को भी यदि कहा जाए तुम बढ़िया चित्र बनाकर दिखाओ, तो वह अपनी कला को प्रदर्शन करने के लिए कोई न कोई आधार खोजता है, या कोई का कोई प्लेन कागज ले आओ, या कोई का कोई कहेगा कोई दीवार दिखाओ, कहेगा या कहीं फर्श दिखाओ, कोई कपड़ा दिखाओ, कोई न कोई प्लाईवुड दिखाओ, कुछ न कुछ कोई स्थान दिखाओ, मैं कहां अपनी कला का प्रदर्शन करूं, कहां दिखाऊं चित्र को। तो कुशल से कुशल चित्रकार भी चित्र का प्रदर्शन करने, अपनी कल्पना को व्यक्त करने के लिए कोई न कोई आधार खोजता है। और उसे कहा कि आकाश में, स्पेस में तुम अपनी कला को दिखाओ, तो शून्य आकाश में वो अपनी कला को दिखा नहीं पाएगा। उसे इनको भी कहो कि कपड़े के बिना, किसी कागज के बिना तुम अपनी कला का पेंट करो आकाश में, नहीं कर पाएगा। कर पाएगा वो? शून्य में कल्पना भी नहीं हो सकती है, भ्रांति भी नहीं हो सकती है। सारे कल्पना और भ्रांति का भी कोई न कोई अधिष्ठान, कोई न कोई आधार चाहिए, और उस आधार का नाम ही है परमात्मा। उसी का नाम है ब्रह्म, उसी का नाम है आत्मा। राहु ग्रस्त दिवा करेन्दु सदृशः, कभी कभी वह आत्मा विशेष रूप में व्यक्त होता है और कभी कभी सामान्य रूप में व्यक्त होता है। एक ग्रहण का दृष्टांत शंकराचार्य जी ने दिया है, चंद्रमा में और सूर्य में जो ग्रहण लगा करता है उसका दृष्टांत देकर अधिष्ठान सत्ता और प्रकाश को सिद्ध कर रहे हैं। जैसे ग्रहण के समय में ग्रहण लगने के लिए दो आधार चाहिए, एक चंद्रमा को आधार बनाता है और दूसरा सूर्य को आधार बनाएगा। आजकल का कोई भी वैज्ञानिक ग्रहण को दिखाना हो, सिद्ध करना हो, तो सूर्य या चंद्रमा के अलावा और कई जगह ग्रहण सिद्ध नहीं कर पाएंगे। हालांकि अनुमान से वो कह रहे हैं इसी तरह जैसे सूर्य में और चंद्रमा में ग्रहण लगा करता है, इसी तरह और ग्रहों में भी ग्रहण लगा करता है। लेकिन वो और ग्रहों में लगने वाले ग्रहण हमको बोध नहीं होता है, हमको भान नहीं होता है। राहु ग्रस्त दिवाकर इंदु सदृश, पूर्ण खग्रास सूर्य ग्रहण जिस समय लगा होता है तो सभी लोग ये कहते हैं कि आज सूर्य पूरी तरह ढक गया। ऐसा ग्रहण लगा कि सूर्य दिखाई ही नहीं पड़ा है। चंद्रमा में ऐसा ग्रहण लग गया कि चंद्रमा पूरी तरह ढक गया, ऐसा लगा कि दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, चंद्रमा ही नहीं दिखा। लेकिन कहा जाता है कि चंद्रमा नहीं दिखा, ये किससे दिखा? चंद्रमा नहीं दिखा, ग्रहण से चंद्रमा ढक गया, ये बात कैसे दिखा? उसी चंद्रमा के प्रकाश से दिखा। सूर्य में पूरा ग्रहण ऐसा लगा कि सूर्य दिखाई ही नहीं पड़ा, ये बात कैसे दिखा? उसी सूर्य के प्रकाश से दिखा। अंतर यही है, ग्रहण न लगा हुआ हो तो सूर्य और चंद्रमा स्पष्ट दिखेगा, पूरा का पूरा दिखेगा, और ग्रहण लगा हुआ हो तो चंद्रमा और सूर्य पूरा नहीं दिखेगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा। फिर भी चंद्रमा का होने का और सूर्य का होने का अस्तित्व का भान होता ही रहेगा। क्या ग्रहण लगने पर सूर्य का भान ही खत्म होता है? कोई कहेगा कि आज अंतरिक्ष में सूर्य ही नहीं है, कहेगा दिन में, ग्रहण लगने पर भी, ग्रहण लगने पर भी कोई कहेगा कि पूर्णिमा के रात्रि को आज अंतरिक्ष में चंद्रमा ही नहीं है, कहेगा कोई? ग्रहण न लगे अवस्था में चंद्रमा जिस रूप में दर्शन हो रहा था, सूर्य का जिस रूप में दर्शन होता रहता था, उस रूप में भले ही न हो, लेकिन चंद्रमा के और सूर्य के अस्तित्व को, सद्भाव को कोई भी मूर्ख भी नकार नहीं सकता है। उसके सन्मात्रता को, भाव मात्रता का कोई भी निषेध नहीं कर सकता। माया समाच्छादनात्, जैसे यह दृष्टांत सूर्य के ग्रहण का, चंद्रमा के ग्रहण का, ग्रहण लगने पर भी सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व का भान होता है, उसी प्प्रकार से कर्णोपसंहरणतः सुसुप्ति अवस्था में इंद्रियां और अंतःकरण इन सब का अविद्या में उपसंहार हो जाने पर भी, जागृत में जिस तरह आत्मा का स्पष्ट भान होता रहता था, मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं जीवंत हूं, क्रिया शक्ति वाला हूं, ज्ञान शक्ति वाला हूं, इच्छा शक्ति वाला हूं, या स्वप्न में भी जिस तरह का भान होता रहता था, बाह्य करणों के रहने पर जागृत का भान, अपने बारे में भान, अंतकरण के रहने पर स्वप्न सृष्टि का भान, अपने बारे में भान जिस तरह हुआ करता था, सुसुप्ति में उस तरह नहीं होता है। लेकिन फिर भी सुसुप्ति में करणों का उपसंहार हो जाने पर भी आत्मा के भान का कोई निषेध नहीं कर सकता है, आत्मा के अस्तित्व का कोई भी निषेध नहीं कर सकता है। सन मात्र, उसके सत्ता मात्र की स्फूर्णा तो सुसुप्ति अवस्था में भी रहती है, यथावत रहता है। सन मात्र कर्णोपसंहरणतः यो भूत सुसुप्तः पुमान, उसके सतमात्रता का, हान मात्रता का, आनंद मात्रता का, सत्ता का, होनापने का, और ज्ञान का, चित्त का, और आनंदता का, सुख का भान उस सुसुप्ति में भी बाधित नहीं होता है। करणों का उपसंहार होने पर भी सुसुप्ति में आत्मा की सत्ता का, आत्मा की चित्तपना का, भानपना का, और आत्मा के आनंदपना का कभी भी तिरोही तिरोधान नहीं होता, भान होता रहता है, स्फुरण होता रहता है, अनुभव होता रहता है। इस बात को कैसे सिद्ध किया जाए, कैसे माना जाए? यह अद्वैत वेदांत का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, प्रत्यभिज्ञान। ये प्रत्यभिज्ञा से ही ये सिद्ध होता है कि उस अवस्था में भी आत्मा का अस्तित्व अनुभव में आ रहा है, सद्भाव अनुभव में आ रहा है, चित्त भाव अनुभव में आ रहा है, आनंद भाव अनुभव में आ रहा है, ये प्रत्यभिज्ञा से सिद्ध होता है। शंकराचार्य जी ने वाक्य प्रयोग करते हैं, दो चीज के लिए प्रत्यभिज्ञा प्रयोग करते हैं शंकराचार्य जी। एक तो आत्मा के सद्भाव के लिए प्रत्यभिज्ञा का प्रयोग करते हैं, दूसरा आत्मा के एक रूपता के लिए प्रत्यभिज्ञा का प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि जागृत के आत्मा अलग है, स्वप्न का आत्मा अलग है, सुषुप्ति की आत्मा अलग है, क्योंकि जागृत का जो अनुभव करता है वह स्वप्न का अनुभव नहीं करता, स्वप्न का जो अनुभव करता है वह जागृत का अनुभव नहीं करता, जागृत और स्वप्न का जो अनुभव करता है सुषुप्ति का अनुभव नहीं करता, सुषुप्ति का अनुभव जो करता है वह जागृत स्वप्न का अनुभव नहीं करता। इन अवस्था भेद से कुछ लोगों को भ्रांति होती है कि आत्मा भी भिन्न भिन्न है, ऐसा मानते हैं। ये शून्यवाद के खंडन के बाद ऊपर की जो पंक्ति है, सन्मात्र करण उपसंहरणता यो भूत सुसुप्ता पुमान, शून्यवादी सुसुप्ति का उदाहरण देते हैं कि सुसुप्ति में कुछ नहीं था, कुछ नहीं रहता है, इसी तरह सृष्टि होने से पहले कुछ नहीं था और अचानक जैसे सुषुप्ति से जगा हुआ व्यक्ति के सामने सारा विश्व प्रपंच प्रतीत होने लगता है, उसी तरह ये सृष्टि कुछ नहीं था, बाद में भ्रांति से सारे जगत प्रतीत होने लगा, ये उदाहरण देते हैं। तो शून्यवादियों का खंडन करने के लिए कहा, उस समय में भी सत चित और आनंद ये तीन वस्तु स्फुरित हो रहे थे, होते हैं। एक बात ये शून्यवादियों का, और दूसरा क्षणिक विज्ञानवादी, वो लोग कहते हैं कि आत्मा है तो सही लेकिन वो आत्मा एक एक क्षण में स्थायी है, एक क्षण में उत्पन्न होता है, रहता है और नष्ट होता है, फिर दूसरे क्षण में उत्पन्न होता है, रहता है, नष्ट होता है, फिर तीसरे क्षण में उत्पन्न होता है, रहता है, फिर नष्ट होता है, चौथे क्षण में उत्पन्न होता है, रहता है और नष्ट होता है, तो कार्य कारण का कैसे तुम इसका अस्तित्व करोगे, क्योंकि पूर्व कारण हुए बिना बाद में दूसरा कार्य नहीं हो सकता है। पूर्व आत्मा जो पहले क्षण वाला आत्मा है वो तो उसी क्षण में नष्ट हो गया, तो फिर दूसरे क्षण के आत्मा का कारण कौन बनेगा, इसके लिए वह क्षणिक विज्ञानवादी उत्तर देते हैं, सजातीय कार्य को उत्पन्न करके वह पूर्व क्षण का कारण खुद नष्ट होता है, वह उत्तर क्षण के लिए अपनी जाति अपने धर्म के कार्य को उत्पन्न करके खुद नष्ट हो जाता है। दूसरे क्षण में जो उत्पन्न हुआ वह भी पूर्व क्षण के जाति का उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह फिर तीसरे क्षण के लिए खुद नष्ट होने से पहले अपने ही स्वभाव अपने जाति या दूसरी आत्मा को उत्पन्न करके वह नष्ट होता है। वह तीसरा भी इसी तरह चौथी आत्मा को अपने जाति आत्मा को उत्पन्न करके वो खुद नष्ट होता है। इसी परंपरा से अनादि अनंत काल तक ये क्षणिक आत्मा ही बार बार उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना, ये उत्पत्ति विनाशशील आत्मा को मानते हैं विज्ञान क्षणिक विज्ञानवाद। उसमें हेतु बता दिया, सजातीय उत्पत्ति कार्यांतर की उत्पत्ति, जैसे पूर्व बीज खुद नष्ट होता है, जमीन में डाले गए पूर्व बीज वह खुद तो नष्ट होता है लेकिन अपने में पहले विद्यमान सारे संस्कारों से युक्त हुए हुए उन पूरे के पूरे दोबारे दूसरे बीज का कारण रूप सारे संस्कार को उस अंकुर में सन्निहित करके वह पूरा का पूरा बीज नष्ट हो जाता है। बीज खुद नष्ट हो जावे तो भी बीजत्व का संस्कार को वह नाश नहीं करता है, वह संस्कार अंकुर में छोड़कर जाता है, और वही पूर्व बीज का संस्कार उस अंकुर में रहता है, उस अंकुर में रहे हुए पूर्व बीज का संस्कार वह वृक्ष में रहता है, उसी वृक्ष में रहे हुए पूर्व बीज का संस्कार कालांतर में फूल में रहता है, उसी फूल में रहे हुए पूर्व बीज के संस्कार कालांतर में फिर फल में रहता है, और उस फल में पूर्व बीज का पूरा संस्कार होने के कारण ही उत्तर फल वह पूर्व और दूसरे अंकुर के लिए फिर बीज बनता है, और वह बीज फिर खुद नष्ट हो जाता है जमीन में डालते ही। खुद नष्ट होने से पहले सारे सजातीय संस्कारों को अंकुर में छोड़ता है, अंकुर भी नष्ट हो जाता है तो वह संस्कार को वह वृक्ष में छोड़ता है, कालांतर में वह वृक्ष भी नष्ट हो जावे तो भी उस वृक्ष में रहने वाले बीज के संस्कारों को फल में छोड़ता है।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Vayilar Nayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakto, abhi hum aur ek sant ya Nayanmar ki kahani sunenge, jinka naam Vayilar hai. तमिल प्रदेश में आधुनिक मद्रास महानगर का एक भाग मयिलापुर है। समुद्र तट पर स्थित इस मयिलापुर का ऐतिहासिक महत्व है। यह तमिल के विश्व विख्यात

0: आनंद रूपी अमृत से प्रभु के समक्ष भोग लगाते। प्रभु प्रेम से सदा मग्न रहकर वाइलार अनेकानेक वर्षों तक परम सत्य रूप शिव के प्रति निष्ठापूर्वक पूर्ण समर्पण से भक्ति करते रहे। उनकी यह भक्ति मानसिक पूजा के रूप में जीवन भर चलती रही। कवि सुंदरर ने इनके विषय में तीर्थोंड तो गए पदों में इनका स्मरण करते हुए कहा है, मैं प्राचीन मैलई के वाइलार के दासों का भी दास हूँ। मैलई जहाँ सागर द्वारा बहाकर लाए गए शंखों की उज्ज्वल कांति से रात्रि का अंधकार भी दूर हो जाता है। कवि चेक्किलर अपने पुराण में वर्णन करते हैं कि इस प्रकार की निरंतर सेवा अर्चना और प्रेम के प्रभाव से भक्त वाइलार को प्रभु चरणों की छाया का सौभाग्य मिला और शिवलोक में नित्यावास का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। वाइलार अपने मन में ही शिव की प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा करते रहे, इसीलिए वह एक परम उच्च कोटि के संत या नायनमार हैं। ओम नमः शिवाय।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Hari Om. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगींद्रमतास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमतास्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ओम शांति शांति शांति। दो मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। पहले पंक्ति हम बोलेंगे, उसके बाद आप लोग बोलना।

0: पार्वतीपतये हर हर महादेव। ओम ओम ओम। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित सायंकालिक विशेष प्रवचन की इस श्रृंखला आज जून 16 तारीख 2012 आज से लेकर लगातार ये 28 तारीख तक शिवानंद लहरी के विषय में आधार पर ये प्रवचन ये श्रृंखला चलेगी। जैसे कि आप लोगों ने पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा, प्रवचन का विषय होगा आदि गुरु भगवान शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी के आधार पर प्रवचन करेंगे। भारतीय दर्शन शास्त्र में, भारतीय आध्यात्मिक क्षेत्र में आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारतीय आध्यात्मिक जगत के मुमुक्षुओं, श्रद्धालु, भक्त, जिज्ञासु, हम सब उनके ऋणी हैं। भारत भूमि उन महापुरुषों का बहुत ऋणी रहा और आगे भी रहेगा। शंकराचार्य जी ने हमारी वैदिक सनातन के उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके कृतियों को, उनके सिद्धांतों को, उनके भाष्य ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक पठन पाठन, अध्ययन और श्रवण निरंतर हमसे होता रहे, यही भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के प्रति हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि है। इसके बढ़कर और कोई श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम नहीं है। विशेष करके हम सन्यासी समाज तो उनके बहुत ऋणी हैं। वास्तव में शंकराचार्य जी कौन थे, सामान्य चिंतन करने वालों के लिए वह एक बहुत बड़े दार्शनिक हो सकते हैं, लेकिन हम उनको केवल दार्शनिक के रूप में नहीं देखते। दार्शनिक तो बहुत हुए हैं इस पृथ्वी में, बहुत दार्शनिक हुए हैं, बहुतों का नाम है। पूर्वीय दार्शनिक, पश्चिमी दार्शनिक, अरस्तु, कांट इत्यादि भी दार्शनिक ही कहते हैं उन लोगों को भी। लेकिन उनको कभी भी आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्मरण नहीं करते, और उनके अनुयायी भले उनको गुरु के रूप में स्मरण करें लेकिन अवतार के रूप में तो स्मरण करते ही नहीं। लेकिन हमारी संस्कृति सभ्यता रही है कि हम उन महान दार्शनिकों को, उन चिंतकों को साक्षात परमात्मा के अवतार के रूप में ही स्मरण करते हैं। साधारण मनुष्य अप्रतीत प्रतिभा के धनी होने मात्र से हम उनको स्मरण नहीं करते। हमने तो शंकराचार्य जी को माना है शंकरम शंकराचार्य। साक्षात भगवान शिव ही शंकराचार्य जी के रूप में अवतरित हुए हैं, यह हमारी मान्यता है। केशवम वादरायणम, साक्षात भगवान विष्णु ही वादरायण के रूप में अवतरित हुए हैं। ये दोनों का अवतार मानो ऐसा अवतार हुआ है कि दोनों ने सलाह करके, दोनों ने विचार विमर्श करके अवतार लिया, ऐसा लगता है। सूत्रभाष्य कृतो वंदे, क्योंकि भगवान विष्णु ने वादरायण के रूप में अवतार लेकर सूत्रों की, ब्रह्म सूत्रों की रचना की, तो भगवान शिव ने शंकराचार्य जी के रूप में अवतार लेकर उन सूत्रों की व्याख्या की है, भाष्य लिखा है। इसलिए हम दोनों को भगवान के ही रूप में स्मरण करते हैं, केवल दार्शनिक के रूप में स्मरण नहीं करते हैं। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी का इतिहास देखो, ऐसा अद्भुत इतिहास भारत भूमि में मिलना बहुत मुश्किल है। छोटे से उम्र में, अपनी आयु में उन्होंने अद्भुत दार्शनिक संपदा का खजाना भारत भूमि को दिया। आध्यात्मिक चिंतन करने वाले मनुष्यों के लिए इतने खजाना दिए है, कभी खत्म न हो, उनके चिंतन की प्रक्रिया कभी समाप्त न हो, हजारों लाखों वर्ष तक भी वह संपदा कभी खत्म नहीं होगी। उस प्राचीन काल, आजकल की तरह शायद भौतिक साधनों से संपन्नता नहीं थी भारत भूमि में, पैदल यात्रा करते हुए पूरे भारत भूमि में अध्यात्म का प्रचार प्रसार और दार्शनिक ग्रंथों की रचना और ऐसे क्रांतिकारी समाज सुधार का उन्होंने काम किया है कि भारत भूमि कभी भी उनके इस देन से उऋण नहीं हो सकता है। बड़े विलक्षण प्रतिभा, ऐसे अवस्था में उनका अवतार हुआ है। भारत के इतिहास को हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जब अनात्मवादी शून्यवादियों का ऐसा बोलबाला था कि न तो कोई वैदिक कर्म हुआ करते थे, न वेद को प्रमाणित मानते थे, वेद और वैदिक सिद्धांत का ही अपलाप हो चुका था, वेद प्रतिपादित कोई यज्ञ याग आदि नहीं होते थे, बंद हो गए थे, और वेद प्रतिपादित जो हो श्री विग्रह भगवत विग्रहों के अर्चना पूजा ये सब खत्म हो गया था। सर्वम शून्यम सर्वम क्षणिकम, इस प्रकार का पूरे भारत भूमि में क्या विश्व में क्षणिक विज्ञानवाद और शून्यवाद का प्रचार ऐसा हुआ था। उस अवस्था में भगवान शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। इतिहास में बड़े सुधार भी हुए हैं और बहुत विकार भी हुआ है। एक पक्ष को सुधारते हैं तो दूसरा पक्ष बिगड़ जाता है। ये संसार का नाम है भाई। हमसे लोग पूछते हैं, महाराज ये कुछ लोग तंत्र मंत्र इंत्र करने वाले जो है बलि चढ़ाते हैं, काटमार करते हैं देवी देवताओं के नाम पर, क्या ये सही है, शास्त्र सम्मत है, हमसे पूछते हैं। है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन किस प्रयोजन के लिए ये सब है? शास्त्र सम्मत है, किस प्रयोजन के लिए, उस पर निर्भर करता है। कहते हैं भगवान बुद्ध के अवतार से पहले पूरे भारत भूमि में तंत्र शास्त्र का ऐसा साम्राज्य था, तंत्र विद्या का ऐसा साम्राज्य था कि हर व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए तंत्र का सहारा लेता था, तंत्र का आश्रय लेता था। और वो तंत्र ऐसा तंत्र था कि कापालिक तंत्र था, वामाचार तंत्र था। उसका ऐसा बोलबाला हो गया था, शाक्त संप्रदाय का जबरदस्त प्रचार था और भैरव और शाक्त शक्ति की पूजा, दोनों उग्र देवता है, दोनों तामसिक हैं, क्योंकि यक्षानुरूपो बलि ये वेद का नियम है। जिस प्रकार के गुण से युक्त देवता है उसके उसी प्रकार की पूजा करो, उसी साधनों से पूजा करो। सात्विक देवता के लिए सात्विक साधन और सात्विक विधि से पूजा करो। देवता यदि राजसिक है तो उसको राजसिक साधन और राजसिक विधि से पूजा करो। देवता यदि तामसिक है तो तामसिक साधन और तामसिक विधि से पूजा करो। तो क्योंकि तंत्र में विशेष करके तमोगुण का प्रयोग करते हैं, मारण मोहन उच्चाटन त्राटन इत्यादि, उसी को अविचार कहते हैं। पहले ऐसा समय निकल गया था, प्रचार था कि पूरे समाज में अपने को शक्ति संचय करने के लिए सब इसी का आश्रय लेते थे और इसी के माध्यम से वो अपने आप को शक्तिशाली मानते थे। परिणाम यह होता था कि उस समय में बलि की बहुत बलि प्रथा बहुत प्रचलन था। भैरव की उपासना करो और बलि चढ़ाओ, काली की उपासना करो बलि चढ़ाओ, बलि ही उपासना का पूर्ण अंग था। तो चारों तरफ काट मार। तो इस प्रकार के कृत्यों को रोकने के लिए भगवान नारायण स्वयं बुद्ध के रूप में अवतार लिया और उन्होंने सब रोकना शुरू किया कि ये बलि क्यों कर रहे हो, पूजा के नाम पर है, ये हिंसा क्यों कर रहे हो, प्राणी की हत्या क्यों करते हो, ये गलत काम कर रहे हो तुम लोग। तो सब लोगों ने बुद्ध को जवाब दिया, कौन कहता है हम गलत काम करते हैं, वेद ने लिखा है ये देख लो, वेद के अनुसार हम कर्म कर रहे हैं, वैदिक कर्म है, शास्त्र प्रमाण है। ऐसा जवाब देने लग गए तो भगवान बुद्ध को यह कहना पड़ा कि हिंसा की आज्ञा देने वाला वेद वेद ही नहीं, वो शास्त्र नहीं हो सकता है, इसलिए वेद गलत है। तो एक प्रयोजन को लेकर उन्होंने ये बात कही थी कि वैदिक हिंसा को रोकने के लिए, बलि को रोकने के लिए उनको यहां तक कहना पड़ा, जिस शास्त्र की दुआई देते, जिस शास्त्र का प्रमाण देकर तुम इस प्रकार के काटमार में प्रवृत्त हो रहे हो तुम लोग, वो शास्त्र ही गलत है। परिणाम ये हुआ कि हिंसा तो रुक गया। तो शास्त्र ही गलत है कहा तो फिर वेद ही गलत हो गया। तो ऐसा समाज में ऐसे धारणा प्रतिष्ठित हो गई कि वेद गलत है, तब वेद के कहे हुए सारे कर्म गलत है। परिणाम हुआ कि यज्ञ बंद हो गए, मंदिर तोड़े गए, मूर्ति तोड़े गए, मंदिर मूर्ति सबकी पूजा आजा सब कुछ अर्चना सब बंद हो गए। सर्वम शून्यम सर्वम क्षणिकम, इस विषम परिस्थिति की सृजना हुई। तो भगवान शिव ने विचार किया, एक प्रयोजन को पूरा करने के लिए विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया, बहुत हिंसा का तांडव परिस्थिति को तो रोका, लेकिन परिणाम हुआ कि सारा वैदिक कर्म रुक गए, यज्ञ रुक गया, पूजा रुक गई ना। तो क्या करना चाहिए? तो फिर उसको पुनः प्रतिष्ठा करनी चाहिए। फिर शंकर भगवान शिव शंकराचार्य जी के रूप में अवतार लेकर कहा कि नहीं, वेद सही है, वैदिक कर्म सही है, इसका मतलब यह नहीं कि मार काट सही है। शक्ति की आवश्यकता है, शक्ति की उपासना करनी चाहिए, लेकिन शक्ति की उपासना करने की विधि दूसरी विधि भी है। ये समयाचार की प्रतिष्ठा आदिगुरु शंकराचार्य जी का देन है। तंत्र शास्त्र में, शक्ति उपासना में, तंत्र शास्त्र में समयाचार की उपासना के देन ये आदिगुरु शंकराचार्य जी का देन है। जहां कोई काट नहीं, मार नहीं, कोई बलि नहीं, कोई तामसिक का कोई अंश ही नहीं है, शुद्ध सात्विक विधि से शक्ति की उपासना करते हैं, तब राजराजेश्वरी ललिताम्बा की पूजा आरंभ करा दिया। तब उन्होंने सौंदर्य लहरी की रचना करके शक्ति की उपासना करनी हो तो इस विधि से करो, काटमार गलत है। तब पूरे भारत भूमि में भ्रमण करते हुए आदिगुरु शंकराचार्य जी ने सब जगह वैदिक कर्मों की पुनः प्रतिष्ठा की, वेद का उद्धार किया, वैदिक कर्म आरंभ कराई और सब टूटे हुए मठ मंदिरों का पूर्ण जीर्णोद्धार किया। उसी क्रम में आप लोग इतिहास पढ़ते हो। आज जो बद्री विशाल हम लोग पूजा करते हैं, दर्शन करने जाते हैं, उन्हें अनात्मवादी शून्यवादियों ने तोड़कर फेंक दिया था अलकनंदा में। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जाकर उस मूर्ति को खोजा और पुनः मंदिर की प्रतिष्ठा की। आज जो श्री विग्रह बद्री विशाल भगवान का है वो शंकराचार्य जी के हाथ से प्रतिष्ठा की हुई है, नहीं तो वो था नहीं, फेंक दिया तोड़कर ना। इसी तरह काठमांडू में जो पशुपतिनाथ भगवान है वह भी अनात्मवादी शून्यवादियों ने तोड़कर फेंक दिया था, खत्म था। शंकराचार्य जी गए, फिर पशुपति भगवान का पुनर्उद्धार किया, जीर्णोद्धार किया, पुनर्प्रतिष्ठा की। आज इस बात को सर्वमान्य रूप में यदि माना जाए तो 1250 वर्ष हो गए, लेकिन उनके बारे में कुछ लोग पूरा 2400 वर्ष मानते हैं। भगवान बुद्ध से 100 वर्ष पश्चात शंकराचार्य जी का अवतार हुआ है ऐसा कुछ लोग मानते हैं, इसलिए लगभग 2400-2500 वर्ष हो गया शंकराचार्य जी का। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, 1250 तो सभी लोग मानते हैं, निर्विवाद है, पश्चिमी और पूर्वीय सभी दार्शनिक लोगों ने 1250 वर्ष पहले के इतिहास को, शंकराचार्य जी के इतिहास को माना है। यह शंकराचार्य जी का देन है। बहुत प्रौढ़ ग्रंथों की रचना और भाष्यों की ग्रंथ की रचना, सारे उपनिषदों पर, एकादश उपनिषदों पर भाष्य ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र जैसे न्याय ग्रंथ पर भाष्य की रचना, लघु प्रस्थान पर आदिगुरु शंकराचार्य जी की भाष्य की रचना हुई है, गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। हमारे दार्शनिक वेदांत दर्शन में इन तीन ग्रंथों को लघु प्रस्थान कहते हैं, प्रस्थान त्रय, तीन प्रस्थान। प्रस्थान का अर्थ होता है मार्ग, प्रस्थीयते इति प्रस्थान, जिसके माध्यम से, जिसके आधार पर हम चल सकें वो प्रस्थान। हमको पहुंचना है मोक्ष पर्यंत, और उस मोक्ष पर्यंत पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग क्या है, तो श्रुति, स्मृति और न्याय। उपनिषद श्रुति प्रस्थान है, गीता स्मृति प्रस्थान है और ब्रह्मसूत्र न्याय प्रस्थान है। इसलिए शंकराचार्य जी बार बार हर जगह ये तीन शब्द का प्रयोग करते हैं, श्रुति स्मृति न्याय युक्ति। इस पर विचार करो तो ये तीनों ग्रंथों पर उन्होंने भाष्य लिखा। इसके अलावा शंकराचार्य जी के अनेक मौलिक रचनाएं हैं, अपनी मौलिक रचनाएं, स्वतंत्र मौलिक रचनाएं। उपदेश साहस्री इतना बड़ा ग्रंथ है जिसमें 1000 उपदेश संकलित हैं। उस ग्रंथ का नाम ही है उपदेश साहस्री, 1000 उपदेश है मुमुक्षुओं के लिए। उसके बाद अनेक सिद्धांत बिंदु आदि हैं, 10 श्लोकी आदि हैं, दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम, विवेक चूड़ामणि, अपरोक्षानुभूति, देखो पंचीकरण, अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। ये सब तो दार्शनिक है, ये सब ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ है। इन सबको देखकर बहुत लोग ये कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी शुष्क वेदांती है, नीरस वेदांती है, दार्शनिक हैं लेकिन नीरस हैं, उनके दर्शनों में कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं। ये आक्षेप भी लगाते हैं व्यक्ति, लेकिन वो लोग एक बात भूल जाते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी के विचारों में, चिंतन में भक्ति रस का इतना ओतप्रोत है, इतना भरा हुआ है कि इतना सागर है। भगवती जगदम्बा पराम्बा की उपासना के लिए शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी नामक 100 श्लोकों की सौंदर्य लहरी नामक एक ग्रंथ की रचना कर दी।
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Oh.

ललितं नहि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। भगवान शंकर के विषय में यहां तक पुष्पदंताचार्य जी ने कह दिया, नहि स्वात्मा राम विषयमृग तृष्णा भ्रमयति। जो अपने स्वरूप में रमण करता है वह कभी भी विषय मृग तृष्णिका के चक्कर में नहीं पड़ता न भटकता है। सातवें श्लोक में बतलाया गया था कि त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति च, एक ही साध्य को प्राप्त करने के लिए अनंत रास्ते हैं। इसी बात को योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, यथा विमत ध्यानाद्वा, आपको जो बहुत अधिक पसंद हो, प्रिय हो, अनुकूल हो, सरल हो, उस किसी भी एक रास्ते से चल करके अपने जीवन का जो लक्ष्य है, अशेष दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, उसको प्राप्त कर सकते हैं। अनवस्थितः वह अनंत है, एक दो तीन चार नहीं है। वेदांत में भी कहा है, यजा यया भवेत पुंसाम वित्पत्ति प्रत्यगात्मनि सासा कल्पना साध्वी साच अनवस्थितः। यया यया का अर्थ है जिस किसी भी साधन के द्वारा, मार्ग के द्वारा, विचार के द्वारा आपके अंतःकरण में जीव ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान हो जाए, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, सासा कल्पना, चाहे वह कैसी भी कल्पना, कैसा भी रास्ता हो, मार्ग उपासना हो, पद्धति, वही सही है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो हमारे यहां अनेक रास्ते हैं वहां पहुंचने के लिए, अन्य मजहब में ऐसा स्वातंत्र नहीं है। इस्लाम कहता है कि बस कुरान साहब, कुरान में जैसा मोहम्मद साहब ने फरमाया है वैसे चलो, अन्यथा नरक मिलेगा। ईसा मसीह ने जैसा बाइबल में कहा है बस वैसे ही चलो, डंडे के बल से है। पर अपने यहां इस प्रकार का जो है कोई अंध परंपरा नहीं है, बल्कि रुचिनाम वैचित्र्यात्, रुचि शब्द का तेज होता है, तेज का संस्कार में लक्षण है। प्रत्येक प्राणियों के संस्कार अलग हैं, कर्म वासनाएं अलग हैं, क्योंकि यह शरीर प्रारब्ध कर्म से निर्मित होता है। कर्मों का तीन विभाग किया है, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध। जिन कर्म विशेष कर्मों के समुदाय से यह शरीर बनता है उसका नाम है प्रारब्ध। और सभी जीव के प्रारब्ध अलग हैं, कर्म वासना संस्कार अलग हैं, इसलिए रास्ते भी अलग अलग हैं। जैसे कि काशी विश्वनाथ पहुंचना हो तो कलकत्ते से चलेंगे तो उसका रास्ता अलग है, कलकत्ते से चलेंगे तो गया होकर के काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे, बेंगलुरु से चलेंगे तो दिल्ली होकर के बनारस पहुंचेंगे। पहुंचना है सबको वाराणसी विश्वनाथ का दर्शन करना है, परंतु रास्ते अलग अलग हैं, गंतव्य एक है। इसी प्रकार यहां बदला दिया कि यहां पर कई तरह के प्रस्थान हैं, त्रयी है, सांख्य, योग, पशुपति मत है, वैष्णव, सबके भिन्न भिन्न होने पर भी सबका मंजिल प्राप्तव्य एक परमात्मा का साक्षात्कार है। कोई भी रास्ते अपने आप में परिपूर्ण नहीं होते हैं, रास्ते तो सारे अधूरे होते हैं। रास्ते का मकसद होता है मंजिल तक पहुंचाना, इसलिए हमारे यहां रास्ते के विषय में कोई भी मतभेद नहीं है, बल्कि लक्ष्य सबका एक है, जैसे भी वहां पहुंचे। रिजु कुटिल नाना पतजुसाम, रिजु बोलते सरल, कुटी बोलते टेढ़ा। ये जो भोले भाले मन वाले व्यक्ति हैं, जो अपठित हैं, ये सीधे रास्ते से जाते हैं, सीधे मतलब राज मार्ग का अवलंबन लेते हैं। जब हम लोग पदयात्रा करते थे बद्रीनाथ की, 1993 किए थे, तीन महात्मा थे, उसमें से कुछ ऐसे थे जो भोले भाले पढ़े लिखे नहीं थे,
तो वो तो सीधा रोड से जाए राजमार्ग से बद्रीनाथ पहुंच गए, पर हम लोग अपने बुद्धि से चलते थे, कई बार भटक गए। लोगों से पूछते कि ये रास्ता कहां जाएगा, बस सीधा जंगल में पहाड़ पर चढ़ जाते। अब पहाड़ पर चढ़ने के बाद आता भटक जाता, कोई मिलता बतलाने वाला नहीं, तो कई बार ऐसा तीन चार बार चक्कर पड़ गया। परंतु जो राजमार्ग से सड़क से जा रहे थे वो हमसे पहले पहुंच गए, दो दिन पहले, क्योंकि हम लोगों ने अपने बुद्धि का विवेक का प्रयोग किया कि ये रोड ऐसे घूम के जा रहा, सीधा चढ़ के नीचे उतर जा पहुंच जाएंगे। परंतु कई बार अपनी बुद्धि फेल हो जाती है। ये जो बड़े पढ़े लिखे हैं न्याय वेदांत वैशेषिक, ये कुटिल रास्ता अपना दे, कुटिल मतलब कि जो बहुत जो है टेढ़ा है, परंतु भोले भाले जैसा गुरु ने बताया आचार्य ने उस बताए रास्ते पर चलकर आराम से परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं। समर्थ रामदास जी कहीं यात्रा पर जा रहे थे, जाते वक्त उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया, समझाया, देख मैं 25 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं और तू ठाकुर जी की बढ़िया सेवा करना, सब विधि बदला दी, किस प्रकार से भगवान की पूजा करना, भोग लगाना, आरती उतारना, इसके बाद मंदिर बंद करना, गौशाला संभालना, सब समझा दिया। जब गुरु ही चले गए तो स्वाभाविक है भक्त भी आना बंद कर दिए। एक दिन बेचारा अकेले परेशान हो गया, सुबह पहले झाड़ू लगाया, फिर गौशाला की सफाई किया, इसके बाद भगवान के नैवेद्य तैयार किया, करते करते 3 बज गया। 3 बजे ले गया भगवान का भोग लगाया, बहुत थक गया था। उसको पता नहीं कि केवल भोग की थाली हटा लेते हैं, 1 घंटा प्रतीक्षा किया कपाट बंद करके, भगवान भोग लगाए, फिर देखता कि भगवान अभी तो खाए नहीं, रोने लगा कि क्या बात है, गुरु जी भोग लगाते तो आप तो ग्रहण करते, लगता है कुछ हमसे नाखुश है। उसके भाव को देख करके भगवान ने भोग लगाया, इसके बाद भोग की थाली लाया, भोजन किया। दूसरे दिन उसने सोचा कि अब मैं अकेले हूं, अकेले तो होता नहीं, जाके हनुमान जी से बोला, लक्ष्मण जी से, कि तुम लोग दिन भर ही बैठे रहते हो, बैठे बैठे तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए कम से कम कुछ काम करना चाहिए। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि बिना परिश्रम के ये जो है ना पेट खराब हो जाता है, हाजमा खराब हो जाती है। देखो मैं अकेले परेशान हूं, जब गुरु जी थे तो बहुत लोग आते थे तो चिंता नहीं थी, तो ऐसा कुछ हमारे सहयोग करो। अब वहां से हनुमान जी उठे, हनुमान जी अपना बर्तन मालने लगे, झाड़ू लगाने लगे, लक्ष्मण जी को लगा दिया गौशाला में। सीता जी कहा कि माता जी आप जो है ना बढ़िया पतली रोटी बना लेती होंगी, मुझे तो अभ्यास नहीं रोटी बनाने का, पहले जो है भगत लोग आते थे बनाते थे माताएं, अब तो कोई नहीं आता। सीता जी चौके में रोटी बनाने लग गई, भगवान राम बोले मैं भी चलूं, बोले नहीं आप यहीं रहो क्योंकि मंदिर खाली हो जाएगा, कोई भगत आ जाएगा तो फजीती हो जाएगी। राम जी को कहा कि आप यहीं मंदिर की शोभा बढ़ाओ, अपने सब सेवा कर लेंगे। हर दिन ऐसे ही काम चलता रहा। जब 25 दिन के बाद गुरु जी आए तो क्या देखते हैं कि हनुमान जी बेचारे झाऊ लगा रहे हैं, लक्ष्मण जी गौशाला की देख रेख कर रहे हैं, सीता ही रोटी बना रही। समर्थ रामदास जी अपने शिष्य के दिव्य भावना को देख के बहुत प्रसन्न हुए, बोले तेरे कृपा से भगवान का साक्षात कम से कम दर्शन हुआ। जो भोले भाले हो तो उनके मन में जरा सा भी शंका नहीं होती है, रिजू सरल रास्ते चलते हैं, जैसा गुरु जी बता दिए वैसा ही करना है। परंतु जो पढ़े लिखे हो तो उनके मन में बड़ा संशय होता है कि जो है ये रास्ता सही है कि नहीं है, हनुमान जी का मंत्र जपूं कि दुर्गा जी का, कि जो है राम जी का, कि कृष्ण जी का, कि शिव जी का, ऐसे बहुत हमको लोग मिले। जैसे कि हमें जाना है बद्रीनाथ, यहां से दिल्ली गए, दिल्ली जाने के बाद सोचे भाई अभी तक पहुंचे नहीं, फिर वापस आ गए। इस तरह से बार बार जाएंगे आएंगे, कभी दिल्ली से वापस, कभी जोशी मठ से, कभी हरिद्वार से, कभी ऋषिकेश से, कभी रुद्रप्रयाग से, तो पहुंच नहीं पाएंगे। यदि कंटिन्यूटी बनी रहेगी, मतलब तारतम्य निरंतरता, तब तो पहुंच जाएंगे।
तो जो कुटिल मार्ग से चलते हैं वे लोग प्रायः कहते हैं कि संशय कारण से भटक जाते हैं, परंतु जैसे भी चले आदमी वहीं पहुंचता है। जिस प्रकार से ये कहीं विद्युत शक्ति ऊर्जा है, वही ऊर्जा ट्यूबलाइट से उज्जवल प्रकाश दे रही है। हरा बल्ब होगा तो हरा प्रकाश आएगा, नीला होगा तो नीला। यदि मान लो किसी के पास केवल ट्यूबलाइट हो और आपको विद्युत समझाना हो, तो वह व्यक्ति यही बतलाएगा कि जिसके द्वारा ये उज्जवल प्रकाश आ रहा इसका नाम है ऊर्जा, विद्युत शक्ति। जिसके पास टेप चल रहा वह व्यक्ति बोलेगा इससे आवाज आ रहा उसी का नाम है विद्युत शक्ति। जिसके पास पंखे हैं वह बतलाएगा इससे कि हवा आ रही उसका नाम विद्युत शक्ति। अब जो है जो व्यक्ति जिस माध्यम से समझा उसी रास्ते को बतलाता है, परंतु समझने वाले को भ्रम हो जाता है कि विद्युत से हवा आती है कि प्रकाश आता है कि शब्द आता है। विद्युत से सब कुछ आ सकता है, वह तो उपाधि का यंत्र का भेद है। इसी प्रकार से जो आचार्य जिस रास्ते से परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं वे उसी रास्ते को बतलाते हैं और कहते भी हैं कि परम इदम अदह पथ्यम, जो यहां लिखा सातवें श्लोक में, कि उस रास्ते से यह श्रेष्ठ है। क्योंकि जो आदमी जिस रास्ते से गया होता है वह उसको सुगम होता है, इसलिए वे आचार्य उसी रास्ते को बतलाते हैं। तो सारे रास्ते श्रेष्ठ हैं, कोई भी किसी से कम नहीं है, बस शर्त हम उस पर चल पड़े। तो सातवें श्लोक में यहां पर यह बतला दिया कि मनुष्य को सन्मार्ग में चलना चाहिए, चाहे किसी रास्ते चले उस पर संशय न करे। क्योंकि भगवान ने कहा संशयात्मा विनश्यति, ये संशय हो गया तो वहीं पर विचारने लग जाएंगे चले कि न चले। प्रारब्ध कर्म के कारण से भले ही मनुष्य को विलंब हो, परंतु पुरुषार्थ में शैथिल्य नहीं होना चाहिए। प्रारब्ध का संबंध इस देहत्रय से होने के कारण से मनुष्य कई बार भजन करता है तो मन नहीं लगता है, विक्षेप होता है। परंतु यदि प्रबल पुरुषार्थ होगा तो प्रबल पुरुषार्थ होने से प्रारब्ध भी क्षीण हो जाता है। भगवान शंकराचार्य की जीवनी में आता है, उनकी आयु मात्र 8 वर्ष की थी, परंतु जिस लिए धरातल पाए थे वे काम अपना जारी रखे। 8 से 16 हो गए, 16 से 32। तो मनुष्य जीवन में आने के बाद प्रारब्ध से भले हम अपना कर्म करें, यदि पुरुषार्थ करें तो प्रारब्ध भी परिवर्तित हो जाता है। महाशिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि के दिन प्रायः काशी विश्वनाथ में सारे देवी देवता आते हैं भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए, ये पुराणों में प्रसिद्ध चर्चा है। एक बार महाशिवरात्रि के दिन भगवान विष्णु, यमराज, सारे देवता वहां उपस्थित हुए। भगवान विष्णु शिव जी की पूजा में तल्लीन थे, पीछे से यमराज आए। यमराज आए तो अपने भैंसे को उन्होंने बाहर खड़ा कर दिया, जाकर देखे तो लंबी कतार है, भगवान विष्णु रुद्राभिषेक कर रहे हैं। खड़े खड़े यमराज ने ऊपर देखा, ऊपर 2 पक्षी थी कबूतर, आपस में कीड़ा कर रहे थे। यमराज ने उनके भाल को पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था कि लोकालोक पर्वत पर एक बिल्ली है, वह बिल्ली महाशिवरात्रि के दिन आज ही इनको खाएगी। यमराज को हंसी आ गई, कहां ये काशी विश्वनाथ बनारस क्षेत्र, कहां लोकालोक पर्वत, हजारों वर्ष यदि बिल्ली चल के यहां आए तो भी पहुंच नहीं सकती, और ये उड़कर पक्षी जाए तो भी वहां पहुंच नहीं सकती, फिर ये जो है भाल पर जो लिखा है सत्य कैसे हो सकता है। लगता है कि ब्रह्मा जी की लेखनी जो है ना कुछ फिसल गई, ऐसा सोच के जोर से ठहाका मार के हंसने लग गए। उनके हंसी को देखकर दोनों पक्षियां डर गईं, चुप शांत बैठ गए। इधर जो है गरुड़ जी अपना चारों तरफ घूम कर देख रहे थे, जब पक्षियों को देखा तो पूछे, क्योंकि गरुड़ महाराज पक्षियों के राजा हैं और राजा का परम कर्तव्य है कि अपने प्रजा का ख्याल रखे।
गरुड़ जी ने पूछा कि क्या समाचार है। पक्षियों ने कहा क्या समाचार बताएं, अभी यमराज जो हमारी तरफ घूर कर देख रहे थे। गरुड़ ने कहा इससे क्या हो गया। बोले कि लगता है कि हमारी मौत बस सामने आ गई, इसलिए हम तो चुपचाप बैठे हैं। गरुड़ ने कहा तुम डरो मत, मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देता हूं जहां से जो है न यमराज पहुंचे न कोई दूत पहुंचेंगे। बस तुरंत गरुड़ जी ने अपने पीठ पर बैठाया, लोकालोक पर्वत पर जाकर छोलाए, छोड़कर तुरंत दौड़ करके जैसे ही मंदिर में प्रवेश किए, यमराज खड़े हैं। अभी देख रहे हैं कि भगवान विष्णु पूजा में ही लगे हैं, संतोष हुआ कि मैं समय से आ गया। इधर यमराज ने पूछा कि तुम इतने थके हुए क्यों, लंबी श्वास क्यों ले रहे हो। गरुड़ जी ने व्यंग किया कि आपको देखकर के तो बड़े बड़े के छक्के छूट जाते हैं, मैं भी तो पक्षीराज ठहरा। यमराज ने कहा कि भगवान के भक्तों के ऊपर हमारी विद्या नहीं चलती, मैं तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गरुड़ जी ने कहा यह बात तो सही है, आप हमारा नहीं बिगाड़ सकते, परंतु हमारे प्रजा को तो नष्ट कर सकते हैं। यमराज ने कहा हम तो आपकी प्रजा किसी कुछ नहीं की आज तो। बोले अभी आपने हमारे प्रजा पक्षियों घूर के देख रहे थे। बोले कि हाँ देख तो रहा था, परंतु मैं उनके भाल को पढ़ रहा था, ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं उनको जो है नष्ट करूं हम लोग ले जाऊं। गरुड़ जी ने कहा भाल पर क्या लिखा था। बतला दिया कि आज ही के दिन लोकालोक पर्वत की बिल्ली उनको खाकर तृप्त होगी, ऐसा भाल पर लिखा था। यमराज ने कहा कि यही तो मैं सोच रहा था कि लोकालोक पर्वत पर ये पक्षी कैसे जाएंगी और वहां से बिल्ली यहां कैसे आएगी, परंतु आपने तो हमारा काम पूरा कर दिया, आपने पक्षियों को वहां पहुंचा दिया, अब बिल्ली उनको खा ली होगी, पेट भर गया होगा, पक्षी मर गए होंगे। देखो गरुड़ जी ने विधाता के लेख को बदलने के लिए सहयोग किया ताकि इनका बचाव हो, उनका मकसद था रक्षा हो यमराज से, परंतु उल्टा हो गया, वे तो विधाता के कार्य में सहयोगी बन गए। उनका मकसद था इनको यमराज से बचाना है, सोच रहे थे कि लोकालोक पर्वत पर बिल्ली जा नहीं सकती है, खा नहीं सकती, आराम से वहां रहेंगे, पर हो गया उल्टा, मौत उनकी पहले से वही बैठी थी।